अरे टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे हर

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित उषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

जा बुरा करते हाँ, पलक फड़के हाय के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

चलिए सुबह आज एक सवाल से शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी सिंपली आफरीन, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड सुबह मुझे बताइए, आपकी जो शुरुआत होती है मॉर्निंग की, ऑफिशियली कब से स्टार्ट होती है? अलार्म बजने पर, चाय कॉफी के बाद होश आता है, या जब आप फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई अब उठना ही पड़ेगा, यही काम है, या फिर जब गाड़ी में बैठ जाते हो फाइनली ऑफिस के जाने के लिए कि हाँ अब हमारी मॉर्निंग हुई है। बिकॉज ऑनेस्टली हर किसी की मॉर्निंग का अपना एक अलग सिस्टम होता है। किसी के घर में ऑलरेडी फुल ऑन ट्रैफिक केओस चल रहा होता है, किसी का स्कूल रन शुरू हो गया होता है, कोई ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, और कोई अभी भी मेरे ख्याल से बेड पे बस 5 मिनट्स और नेगोशिएट कर रहा होगा। व्हाटएवर स्टेज ऑफ द मॉर्निंग यू आर एट, मैं आ गई हूँ यहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए और एक गारंटी देने के लिए कि भाई देखो, शुरुआत अगर हमारे साथ की है ना 89.6 FM पर मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन के साथ, तो जबरदस्त गाने और जबरदस्त मूड इज एब्सोल्युटली गारंटीड। सो लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स रादर किक स्टार्ट दिस डे विद दिस फैंटास्टिक ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर हमारे साथ किए ना 89.6 FM पर मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन के साथ, तो जबरदस्त गाने और जबरदस्त मूड इज एब्सोल्युटली गारंटीड। सो लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स रादर किक स्टार्ट दिस डे विद दिस फैंटास्टिक ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. Na vjetvala burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है
3: भैया? किससे बात?
2: अबे किससे बात करनी है
3: भैया? नंबर चेक करके,
2: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
3: पागल
2: पागल,
3: पता नहीं कौन बोल रहा
2: है, पता नहीं कौन बोल रहा है।
4: इको आ रहा है, इको।
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो, जैन साहब भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ
3: भैया। नंबर चेक,
2: नंबर चेक के मिला।
3: हेलो
2: हेलो
3: भैया, क्यों परेशान कर रहा,
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का?
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि है।
4: रवि, रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
3: कुकड़ू
4: को भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: This show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

वेल देखिए, अब एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने के लिए आपकी जो फेस की वैल्यू है ना, वो और भी बढ़ने वाली है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सिंपली आफरीन को। एंड वेल, इफ यू आर वंडरिंग फेस कैसे काम आने वाला है आपके ट्रैवल को आसान बनाने के लिए, तो लेट मी टेल यू, फास्ट पास जो है एक फेशियल रिकॉग्निशन सर्विस एट हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पार्टनरशिप विद कतर एयरवेज, ये हो गई है शुरू। अब इसके लिए क्या करना है आपको, रजिस्टर करना है एंड योर फेस इज सिक्योरली लिंक टू योर ट्रैवल डिटेल्स एंड एट सिलेक्टेड एयरपोर्ट टच पॉइंट्स। आपको बस कैमरा में देखकर आपका फेस वहां पर दिखाना है, इंस्टेड ऑफ बोर्डिंग पास निकालो, पासपोर्ट निकालो, नहीं, इतना सब कुछ करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करंटली देखिए, ये सिर्फ कतर एयरवेज पैसेंजर्स के लिए है ऑन एलिजिबल फ्लाइट्स एंड यू नीड टू बी 18 एंड अबव, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपकी जर्नी जो है वो दोहा से स्टार्ट होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन भी काफी सिंपल है, कतर एयरवेज ऐप से रजिस्टर कर सकते हैं आप, विच इज बेसिकली अ वन टाइम सेटअप है फॉर फ्यूचर एलिजिबल ट्रिप्स, या फिर आप HIA के रो 3 में सेल्फ सर्विस कियोस्क जो है वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन पर जो रजिस्टर करोगे, इट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप। अब फास्ट पास जो है इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है मैं बताती हूं। एक तो सेल्फ सर्विस बैकड्रॉप्स पर, और फिर उसके बाद डेडिकेटेड सिक्योरिटी गेट्स 9 and 10 एंड ऑल्सो द बोर्डिंग गेट्स। एंड अगर प्राइवेसी को लेकर आपको क्वेश्चन है कि यार कैसे क्या, तो बता दे कि आपका जो बायोमेट्रिक डेटा है ये इज डिलीटेड 24 आवर्स आफ्टर योर फ्लाइट टेक्स ऑफ, मतलब एक बार डिपार्ट कर लिया उसके बाद 24 घंटे के बाद सब डिलीट। सो वेल, इतनी कन्वीनियंस लेकर आ रही है टेक्नोलॉजी या हमारी जिंदगी में कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। आई थिंक सो, हमारी जो आंखें हैं, फिंगरप्रिंट है, यही शायद पासपोर्ट का काम करे। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कतर में रहने वाले इंडियंस के लिए मुझे ऐसी स्टोरीज ना हमेशा इंटरेस्टिंग लगती हैं, बिकॉज हम यहाँ सिर्फ जॉब्स और करियर्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं, देयर आर पीपल बिल्डिंग बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड दैट आर नाउ गेटिंग नोटिस्ड अक्रॉस द रीजंस। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, एंड देयर इज वन सच स्टोरी फ्रॉम कतर्स हेल्थ केयर सेक्टर।
1: क्या खबर कतर?
0: वेल देखिए, खबर ऐसी है दैट इंडियन ओरिजिन कतर बेस्ड एंटरप्रेन्योर मोहम्मद मियादाद वीपी हु इज बिहाइंड 33 होल्डिंग्स एंड नसीम हेल्थ केयर हैज मेड इट टू फोर्ब्स मिडिल ईस्ट टॉप हेल्थ केयर लीडर्स 2026 वेल इन इट्स फाउंडर्स एंड शेयर होल्डर्स कैटेगरी। इन फैक्ट ही इज वन ऑफ ओनली टू कतर बेस्ड फाउंडर्स सिलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। अच्छा, इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग और ये बनाती है कि हाउ मच हेल्थ केयर इटसेल्फ इज चेंजिंग। हिज ग्रुप हियर इन कतर नाउ वर्क्स अक्रॉस मेडिकल सेंटर, लैब, स्पेशलिटी केयर, मेडिकल सप्लाईज एंड एआई ड्रिवन हेल्थ केयर सर्विसेज। फोर्ब्स आल्सो नोट्स दैट नसीम हैज लॉन्च्ड एन एआई पावर्ड कॉल सेंटर इन कतर्स प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर एज वेल, एंड दिस इज एक्चुअली हिज फोर्थ consecutive year of Forbes recognition. Kya baat hai. So from an Indian expat starting a journey in Qatar to building something that's now being recognized regionally, definitely ye bahut hi zabardast success story hai. Mike se dil tak aafreen hai aapke saath right here on Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: वेल, आपका अगर कतर से सऊदी जाना बहुत ज्यादा ऑफन होता है, ट्रैवल करते हैं काम के सिलसिले में या व्हाट एवर रीजन, देन दिस अपडेट इज फॉर यू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को एंड द खबर कुछ ऐसी है।
1: क्या खबर कतर?
0: कतर और सऊदी के बीच ना पेमेंट्स अब थोड़े और सीमलेस होने वाले हैं। कतर सेंट्रल बैंक एंड सऊदी सेंट्रल बैंक हैव ऑफिशियली अनाउंस दैट कतर का नेशनल पेमेंट कार्ड हिमयान अब ग्रेजुअली सऊदी अरेबिया में भी एक्सेप्ट होगा और सऊदी का मादा कार्ड जो है वो यहाँ पर कतर में चलेगा। द रोल आउट हैज स्टार्टेड एंड एक्सेप्टेंस विल एक्सपांड ग्रेजुअली एज द इंटीग्रेशन फेसेस आर कम्प्लीटेड। अगर आप हिमयान से फेमिलियर नहीं है तो मैं बताऊं, हिमयान इज कतर्स नेशनल पेमेंट कार्ड व्हाइल मादा इज सऊदी अरेबियाज नेशनल पेमेंट नेटवर्क। एंड इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट ये सिंपल है, क्रॉस बॉर्डर कार्ड पेमेंट्स को इजियर, मोर एफिशिएंट एंड पोटेंशियली लेस कॉस्टली बनाएगा। इन फैक्ट दिस कनेक्ट्स विद द लार्जर जीसीसी नेट पेमेंट नेटवर्क थ्रू विच जीसीसी रेसिडेंट्स कैन यूज पार्टिसिपेटिंग डेबिट कार्ड्स फॉर एटीएम विड्रॉवल्स, हो गया पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट्स अक्रॉस द रीजन। बस एक चीज याद रखिएगा कि ये रोल आउट ग्रेजुअल है, सो अभी ये अज्यूम मत करिए कि सऊदी के हर पेमेंट टर्मिनल पर हिमयान इमीडिएटली वर्क करेगा, बट डायरेक्शन डेफिनेटली यूजफुल है और स्पेशली ये जो है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही काम आने वाला है। सो वेल, मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक ऐसे ही कतर की अपडेट्स लेकर आती रहूंगी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's out.
0: Bollywood Boldal, Bollywood Bollywood Bollywood Boldal,
1: only on Mirchi, It's hot.
0: Mirchi one, It's hot.
4: Hello, Mirchi Helpline.
5: Yes, of course. मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
4: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
5: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

Well, आपको नहीं लगता कि आजकल का कॉमेडी कंटेंट जो है वो बहुत फोर्स्ड होता है, कि हमें ऐसा लगता है कभी कभी, अच्छा अभी हमें बताया जा रहा है ओके, हमें अब यहाँ हंसना है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, एंड आफरीन इज गोना टॉक अबाउट समथिंग विच शी हैज जेन्युइनली एंजॉयड। ऐसा कॉमेडी कंटेंट ऑफ लेट आता नहीं है। ओके, रिमेंबर वो टाइम जब कॉमेडी डिडंट हैव टू ट्राई सो हार्ड। लेट मी टेक यू बैक टू सारा भाई वर्सेस सारा भाई, खिचड़ी, बा बहू और बेबी। वो कैरेक्टर्स थोड़े अजीब होते थे, सिचुएशंस बिल्कुल ऑर्डिनरी होती थी, कोई मैसिव प्लॉट नहीं था, बट समहाउ यू वुड जस्ट सिट देयर स्माइलिंग। एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स का ये नया शो चुंबक ब्रिंग्स बैक अ लिटिल बिट ऑफ दैट फीलिंग। इट इज बेसिकली फाइव फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन चुंबक कॉलोनी मुंबई में। नेबर्स है, लेकिन वो पुराने वाले नेबर्स जिनके घर जाने के लिए ना अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होता है, जिनके आपको ना घर में क्या चल रहा है ना सब कुछ पता होता है, आप पहले ही उनके साथ में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े होते हो। एंड वी हैव ऑल विटनेस दिस काइंड ऑफ नेबर्स, है ना, हम एट सडन पॉइंट ऑफ टाइम वी प्लेड सच रोल्स, एंड परहैप्स दैट्स व्हाई द शो फील्स सो वार्म। इट इज इन ट्राइंग टू शॉक यू और कॉन्स्टेंटली गिव यू अ ट्विस्ट। इट फाइंड्स नेबर्स है, लेकिन वो पुराने वाले नेबर्स जिनके घर जाने के लिए ना अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होता है, जिनके आपको ना घर में क्या चल रहा है ना सब कुछ पता होता है, आप पहले ही उनके साथ में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े होते हो। एंड वी हैव ऑल विटनेस दिस काइंड ऑफ नेबर्स, है ना, हम एट सडन पॉइंट ऑफ टाइम वी प्लेड सच रोल्स, एंड परहैप्स दैट्स व्हाई द शो फील्स सो वार्म।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
2: आप किससे बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से बातें कर रहे हैं।
3: नहीं, नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली नहीं,
3: मैं मेरी वाइफ है यार।
2: वो तो कोई बपौती है क्या?
3: नहीं, तमीज सीखिए। नहीं, तमीज
2: नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए।
3: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: Well, out the parents out there, अगर आपके बच्चे 8th, 9th या 10th grade में हैं, then this is definitely for you. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. एंड
1: क्या खबर कतर.
0: देखिए खबर में तो ऐसी है दैट कतर में नेशनल स्कूल वैक्सीनेशन कैंपेन में अब HPV वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है. कैंपेन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स मिलाकर 301 स्कूल्स कवर करेगा विद मोर देन 75,000 स्टूडेंट्स इन ग्रेड 8, 9 एंड 10th. अब HPV वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताऊं. दैट HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कुछ हाईरिस्क टाइप्स फ्यूचर में सर्टन कैंसर्स कॉज कर सकते हैं. एंड दिस वैक्सीन इज एसेंशियली अबाउट अर्ली प्रिवेंशन. फर्स्ट फेज जो है 28 सितंबर से लेकर 18 नवंबर 2026 तक चलने वाला है. इसमें ग्रेड 9 स्टूडेंट्स को HPV वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जाएगी. सेकेंड फेज 25 अप्रैल से लेकर 16 मई 2027 तक होने वाला है, विच विल ऑल्सो इंक्लूड ग्रेड 8 स्टूडेंट्स एंड द सेकेंड डोज फॉर ग्रेड 9. एंड पेरेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वैक्सीनेशन कंपल्सरी नहीं है. इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल एंड रिक्वायर्स प्रायर साइंड कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट्स और अ गार्डियन. सो अगर आपके घर में 8th, 9th या 10th के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल से आने वाले कंसेंट फॉर्म और अवेयरनेस लीफलेट को, वो यूजुअल स्कूल सर्क्यूलर है, बाद में देख लेंगे, ऐसे फाइल मत कर देना. रीड इट प्रॉपरली, अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन एंड देन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn?
1: Yes!
0: To play?
1: Absolutely!
0: To grow?
1: With Maserati!
2: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
1: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
2: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar. 89.6, 89.6.
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

देखिए कतर में अगर आप 8-10 साल या उससे भी ज्यादा है तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरनून को आप सुन रहे हो राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कोई भी जगह पर हम कितने भी साल रहते हैं या समथिंग, देन वी ऑलवेज कंपेयर के इन्फ्लेशन कितना हुआ है, प्राइसेस कितनी बड़ी है चीज़ों में। अब हम इसमें ना इन्फ्लेशन में हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे जैसे रेंट, स्कूल फीस और बड़े एक्सपेंस, बट वी आर टॉक अबाउट आर रेगुलर ग्रोसरी यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेसिक किचन एसेंशियल्स। कभी कभी लगता है कि दुनिया भर में प्राइसेस जितनी रैपिडली चेंज हुई है उस कंपेरिजन में कतर में एवरीडे ग्रोसरी आइटम्स हैव रिमेन रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? वेल, देयर इज एन एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस, आई टेल यू। अकॉर्डिंगली यहाँ पर न्यूज में वेजिटेबल प्राइसेस एट अल सैलिया सेंट्रल मार्केट आर करंटली रिलेटिवली स्टेबल डिस्पाइट समर हीट है, हायर स्पॉइलेज है एंड इस टाइम लोकली ग्रोन प्रोड्यूस की लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी होती है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स हमारे जो ग्रोसरी का मतलब, अगर मैं सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात करूं उसके बारे में बात कर रही हूं मैं, ठीक है। एंड वन मेजर फैक्टर इज कतर्स डाइवर्सिटी ऑफ सप्लाई। मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो बहुत सारे कंट्रीज से आती है, सो मार्केट किसी एक सोर्स पर ना कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता है यहाँ पर। और अगर एक सोर्स से सप्लाई कम भी हो जाती है तो प्राइस इंक्रीज बिल्कुल नहीं होती है। ऑल्टरनेटिव्स जो रहते हैं दैट हेल्प्स मेंटेन अवेलेबिलिटी एंड कॉम्पिटिशन। एंड अनदर पॉजिटिव बिट यहाँ पर यह भी है कि अगले 4-6 हफ्तों में अब तो लोकली ग्रोन कतर प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में एक्सपेक्टेड है, विच वेंडर्स से कि इस वजह से शायद जो प्राइसेस है और भी कम हो सकते हैं। सो द लॉन्ग टाइम कतर रेसिडेंट्स, आई जनरली वांट टू नो फ्रॉम यू कि 10 साल पहले के कंपैरिजन में आपको अपना एवरीडे ग्रोसरी जो है बिल कितना डिफरेंट लगता है। कि ऐसा सच में है कि पहले प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती थी और या बहुत सस्ती मिलती थी और अब ये महंगी हो गई है? बिकॉज समटाइम्स इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स एक स्टोरी बताते हैं और हमारा सुपरमार्केट ट्रॉली दूसरी स्टोरी बताता है। वी आर द कंज्यूमर्स, हम खुद जब खरीदते हैं हमें पता चलता है। आई वॉन्ट नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मीनवाइल अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी? फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

Well, weekend is here, और ऐसा हो सकता है कि weekend है और आफरीन आपको OTT recommendation ना बताए? Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को, and one thing I have been recommending this entire week. मेरे ख्याल से मैं weekend तक भी नहीं रुकी after I watched the first episode of this series, and that is Chumbak. Light-hearted family वाली comedy, और वो comedy जो हमारे time पर हुआ करती थी. सारा भाई वाली comedy यार, खिचड़ी, सारा भाई, बाबू, बेबी, ये सारी चीजें आती थी याद है, जो आतिश कपाड़ी और जेडी मजेठिया बनाते थे. And yes, now they have come up with Chumbak. और Chumbak के मजे की बात ये लगती है कि इसका star cast is quite impressive. नीना गुप्ता है, देवेन भुजानी है, सुमित राघवन है, देयर इज सुमित व्यास. इफ यू डोंट नो, आई विल टेल यू, देवेन भुजानी तो वी ऑल नो हिम, हम देख भाई देख से उसे देखते हुए आ रहे हैं. देन सुमित राघवन वही है जो सारा भाई में मोनिशा का हस्बैंड का एक किरदार निभाता है. एंड नीना गुप्ता, डस शी रियली नीड एनी इंट्रोडक्शन? सो यस, यू नो हाउ गुड द स्टार कास्ट इज विद दिस. क्राइम थ्रिलर मूड है अगर आपका तो घमासान ऑन Z5. दिस इज डायरेक्टेड बाय तिग्मांशु धुलिया, और प्रतीक गांधी है इसमें एज एन IPS ऑफिसर, एंड अर्शद वारसी हमारा सर्किट इज ऑल्सो देयर as a decoy this time. Okay, so well, next is Zakir Khan ka Papa Yaar. Aur ye jo hai funny bhi hai, emotional hai. Ek relationship jo hamare papa ke saath mein hamara hota hai aur kahin na kahin bahut relatable ho jata hai ye. So many choices this weekend, right? Comedy bata diya maine aapko, thriller bata diya, stand up comedy bhi bata diya. And yes, you have to just choose and watch. Main hu Afreen aapke saath, right here mic se dil tak on Mirchi It's Hot.

0: Mirci.
1: Mirci.
2: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieta la burga. Mirci, burga.
3: Hello.
4: Is that Mr. Vipul?
3: Yes.
4: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
3: ओके।
4: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करना क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: इन हैंड।
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई है बच्चे के कभी? और इसमें
3: क्या बकवास कर रहे हैं?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
3: हाँ, हु आर यू?
4: सर मनीष।
3: हु आर यू?
4: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
6: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
5: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
6: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
5: Exactly. So kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
6: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
5: Lulu Mega Deals.
6: More shopping, more savings.
5: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: आफरीन।
1: वैसे तो वक्त हमारी शायरी का हुआ है, लेकिन आज ना आफरीन आपको शायरी नहीं सुनाएगी। घबराइए मत, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी नज़्म। अब शायरी और नज़्म में पहला फर्क क्या है? सिंपल सा है, शायरी चंद अल्फाजों में ना एक एहसास कह जाती है, नज़्म थोड़ी सी और लंबी होती है, वो एहसास थोड़ा सा ज्यादा सफर करती है। और आज का ये सफर है हिंदी से उर्दू तक। वैसे तो ना हर जुबा की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन उर्दू के कुछ अल्फाज पता नहीं क्यों दिल तक थोड़े और गहरे उतरते हैं। जैसे प्यार को ही ले लीजिए, प्यार खूबसूरत है, लेकिन उसी को अगर आप मोहब्बत कह दो तो पता नहीं क्यों थोड़ा और महसूस होता है। और इसी पूरे एहसास पर आज क्या नज़्म।
2: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
1: मुझे उर्दू ज्यादा नहीं आती, बस जरा सी आती है, मगर तुम्हें चाहने के बाद कुछ लफ्ज खूबसूरत लगने लगे हैं। प्यार को मोहब्बत, सपनों को ख्वाब, जुदाई को फिराक और चाहत को जुस्तजू कहने लगे हूँ। हिंदी में कहूँ तो तुम्हारी बहुत याद आती है, उर्दू में कहूँ तो तुम्हारी यादों में एक कशिश सी है। हिंदी में तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है, उर्दू में तुम्हारा दीदार ही दिल का सुकून है। मुझे उर्दू ज़्यादा नहीं आती, बस ज़रा सी आती है, मगर तुमसे मोहब्बत हर जुबा से ज्यादा आती है। कैसा लगा आज की ये नज़्म बताइए मुझे 5000 1896 पर व्हाट्सएप करके। और शायद ना जुबा कोई भी हो, जब बात दिल की हो ना तो तर्जुमे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तर्जुमा ट्रांसलेशंस। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। मिर्ची इट्स हॉट।

0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट इज़ टाइम कि हम आज के गोल अपडेट सुने. वेल आज पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार इज़ फॉर 588 कतरी रियाल, वेर एज पैम्प 5 ग्राम गोल्ड बार इज़ फॉर 2755 कतरी रियाल. पैम्प 10 ग्राम गोल्ड बार इज़ फॉर 5440 कतरी रियाल, वेर एज पैम्प 1 आउंस गोल्ड बार इज़ फॉर 16816 कतरी रियाल. पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज़ फॉर 62447 कतरी रियाल. वेल गोल्ड लेना हो या ना लेना हो, लेकिन अपडेट्स पर हमेशा नज़र रहनी चाहिए. विद दिस स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज योर सिंपली आफ्टरनून ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: well, देखिए हम सब ऐसे स्टेज पर है ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना जिंदगी में, कुछ कुछ चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं या फिर छूटते जा रही है। होता है ना ऐसा कि कभी कभी किसी के बदल जाने से ज्यादा अजीब ये लगता है कि एक वक्त था कि कोई इंसान आपके जिंदगी में इतना अहम था, आप उसे खोना नहीं चाहते, एंड देन वक्त बदल जाता है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, जज्बात बदल जाते हैं, एंड विदाउट एनी अनाउंसमेंट कुछ लोग पीछे छूटते जाते हैं। और आज इसी एहसास पर आफरीन की शायरी।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, कौन किसको दिल में जगा देता है, कौन किसको दिल में जगा देता है, दरख्त भी सूखे पत्तों को गिरा देता है। दरख्त यानी वो पेड़, ठीक है, जिससे कभी उन पत्तों को अपनी शाखाओं पर संभाल कर रखा था, वो पेड़ जो सूखे पत्तों को भी गिरा देता है। कौन किसको दिल में जगा देता है, दरख्त भी सूखे पत्तों को गिरा देता है। वाकिफ है हम इस दुनिया के रिवाजों से, वाकिफ है हम इस दुनिया के रिवाजों से, गालिब जब दिल भर जाए तो हर कोई भुला देता है। थोड़ी कड़वी है लेकिन शायरी की खूबसूरती भी यही है ना कि कभी कभी दो लाइंस वो कह जाती है जो हम एक पूरे कॉन्वर्सेशन में नहीं कह पाते हैं। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: रेडी
5: रेडी
4: टू लर्न?
5: यस।
4: टू प्ले?
5: एब्सोल्युटली।
4: टू ग्रो?
5: विद मेज़राती।
6: The school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी और की जिंदगी में आपने एक ऐसा अहम किरदार निभाया हो साइलेंटली, बिना उनके जाने हुए? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और ऐसा होता है ना, कई बार कुछ लोग हमारे जिंदगी में होते हैं एंड वी डोंट रियलाइज अंटिल दे लीव अस कि यार कितना ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था. वैसे ना, मैरीगोल्ड थ्योरी भी ऐसी एक चीज होती है जहां पर मैरीगोल्ड फ्लावर्स का जो प्लांट होता है ना, वो जब गार्डन में होता है तो वो दूसरे प्लांट्स को पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है, और जहां वो होता है उसके आसपास बगल के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो नरिश हो जाते हैं. वैसे ही कुछ लोग हमारी लाइफ में ना इमोशनल मैरीगोल्ड्स होते हैं, उनसे बात करो तो एंजाइटी थोड़ी सी कम हो जाती है. ऐसा लगता है कि यार हाँ, लाइफ शायद थोड़ी ठीक चल रही है. उनका सपोर्ट हमारे ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता है कि यार इनके ना होने से न जाने हम क्या हो जाएंगे, अंटिल दे आर नॉट देयर. वैसे इसी पर एक शायरी अर्ज करना चाहूँगी.
1: आफरीन की डायरी से शायरी.
0: अर्ज किया है, उलझी हुई जिंदगी थके हुए से हम, उलझी हुई जिंदगी थके हुए से हम, थोड़ी सी तुमसे गुफ्तगू और सारे मसले खत्म. माइक से दिल तक आपकी आफरीन है आपके साथ. लेना चाहूंगी अलविदा, लेकिन जल्द मिलूंगी. बस खुश रहिएगा और किसी के जिंदगी का मैरीगोल्ड फ्लावर बन जाइए. बने रहेगा उनमें. शी इज हॉट. टाटा बाय बाय सायनारा.

0: Mirchi.
1: Hello, Mirchi helpline?
2: Hi there, what's up? Tell me.
1: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है, क्या करूं?
2: ब्रो यार, इट्स सो सिंपल, कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे, एवरीवन विल नो योर वैल्यू।

सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल? हाँ जी, हाल चाल तो आपके सबके अच्छे ही होंगे, लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी और मैं सोच रही थी कि हमारे पास ना बैक ऑफ द माइंड कितने काम है करने के लिए, हमको ये भी करना है वो भी करना है। फॉर एग्जांपल हमें अपनी कोई हॉबी थी जो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिंदगी में करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न आपको बताऊँ क्या है? यस, जो आपके हाथों में फ़ोन रहता है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन ये सच्चाई है। आई एम नॉट बीइंग अ मदर टू एवरीवन, लेकिन ये एक सच्चाई है जिंदगी की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दैट इज हमारा फोन, जिसने हमारा सारा टाइम ले लिया है और पूरी अटेंशन हम अपने फोन को ही देते हैं। हम किसी इंसान से इतना नहीं जुड़े हैं जितना हम अपने फोन से जुड़े हैं। हमारे लिए हमारा फोन उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि सांस लेना। बस उसी बात पे मैं एक एग्जांपल कहना चाहती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में जो मैंने फेस किया है वो ये है कि फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी का टाइम इतना ले लिया है कि मुझे मेरे लिए टाइम कम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी हॉबीज़, जैसे मुझे आर्ट का शौक था, डांस का शौक था, गाने का शौक था, ये सब शौक ना मैं अपने ना करके मैं अपने फ़ोन पे लोगों को करते हुए देखती हूँ एंड आई फील सैटिस्फाइड कि हाँ चलो कोई कर रहा है फॉर मी। बस यही हैबिट जो है फ़ोन ने मेरे अंदर डाल दी है। आई होप आप अगर इस बात पे एग्री करते ना तो मुझे ना ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है मिर्ची ईशा के नाम से, एंड ऑल्सो आप मिर्ची वन कतर पे भी बता सकते हैं 5110896 पे भी आप बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। भाई मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि सारा टाइम मेरा मेरी हॉबीज को खत्म करते हुए लोगों की देखते हुए मेरा निकल जाता है। और इसी के साथ आज हम शो शुरू कर रहे हैं हमारा मिर्ची वीकेंड वाइज, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इवेंट्स की। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La viva la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हेलो, किससे बात करनी है?
3: भैया किससे बात करनी है?
2: भैया नंबर चेक करके
3: दोबारा मिला?
2: पागल
3: पता नहीं
2: कौन बोल रहा
3: है।
4: इको आ रहा है, इको।
2: हेलो।
3: जैन साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
2: भैया
3: नंबर देख के मिला।
2: हेलो। भैया क्यों
3: परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार?
2: पता नहीं कौन
3: है यहाँ पे फोन करे जा रहा है,
2: हैं? भैया क्या?
3: अबे पागल हो गया क्या यार?
2: महंगा
3: पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
2: पागल
3: कहीं का?
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
2: रवि,
4: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
6: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
5: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
6: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
5: Exactly. So kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
6: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
5: Lulu Mega Deals.
6: More shopping, more savings.
5: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ लोगों को डेस्टिनेशन तक नहीं बल्कि आइडियाज और अवेयरनेस को भी कनेक्ट करे। कुछ ऐसी ही स्टोरी है कतर रेल की। कतर रेल ने 2026 टेली अवार्ड्स में 6 प्रेस्टीजियस अवार्ड अपने नाम कर लिए और अरब कप 2025 और कतर रेल ओपन चेस टूर्नामेंट जैसे कैंपेन्स से लेकर एक्सेसिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बात करें सस्टेनेबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक कतर रेल ने इन मैसेजेस को क्रिएटिव और एंगेजिंग स्टोरीज के थ्रू प्रेजेंट किया। सच अ ब्यूटीफुल कंट्री विच थिंक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज दी एक्सेसिबिलिटी। और ये अवार्ड सिर्फ ट्रॉफीज के लिए नहीं है, ये दिखाते हैं कि ये क्रिएटिविटी के साथ अवेयरनेस और कम्युनिटी इम्पैक्ट को भी एक ही ट्रैक पर आगे लेके जाया जा सकता है। तो मतलब ये हैंड इन हैंड चल सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ कतर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर अपडेट्स ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए जब

कतर को जैसा हम आज की डेट पे देखते हैं वैसा ही कई साल पहले नहीं था। बहुत बड़ा चेंज कतर में देखा गया है। और अगर आप इस चेंज को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कतर ने कहां से शुरू किया और किस तरीके का लाइफस्टाइल था उसका पहले, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एक ऐसी जगह जहां पे आप बहुत साल पीछे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कतर की हिस्ट्री, लाइफ, किस तरीके से ट्रेडिशनल होम्स होते थे, विलेज स्ट्रीट्स होती थी, हेरिटेज सब डिस्प्ले है, किस तरीके से लोग पहले ज़माने में रहते थे, किस तरीके से वो व्हीकल्स जो है उनमें ट्रैवल करते थे। एंड उसके अलावा आपको ये ब्यूटिफुल सी कंट्री की प्राइवेट कलेक्शन आपको मिलेगी सिर्फ एक जगह, दैट इज़ शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम में। एक और बात बता दूं कि हर कॉर्नर जो है ना वहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्टोरी बताएगा जो आपको तो फैसिनेट करेगा ही लेकिन आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जैसे कि वो कतर हिस्ट्री भी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जब वो कतर की हिस्ट्री को देखेंगे दे विल फील फैसिनेटेड एंड दे विल फील कि यार मुझे और जानना है कतर के बारे में, वाकई में ऐसा फील होगा। और अगर आप इस म्यूज़ियम में पहले जा चुके हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर बताइएगा कि आप गए थे बच्चों के साथ और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। आप मिर्ची वन कतर पर भी बता सकते हैं और मिर्ची ईशा पर भी ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था। और उसके बाद या उससे पहले कभी भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अल समरिया इस्टेट है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं पीसफुल सराउंडिंग्स। यहाँ पे आपको अरेबियन ऑरिक्स भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको पीकॉक्स भी मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम के पास। एंड अगर आप नहीं गए हैं तो जाइएगा ज़रूर। इस वीकेंड बच्चों को लेके जाइए और इन्जॉय करिए इस वीकेंड को। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

इमेजिन करो आप एक रूम में बैठे हो और सामने कोई स्ट्रेंजर खड़ा है और वो आपको कुछ बातें करता है आपसे और आपको ऑब्जर्व करता है और फिर अचानक बोलता है कि आपके माइंड में इस समय जो नाम चल रहा है वो है ये। एंड आप सोचोगे कि वेट, इसने मेरा माइंड रीड कैसे कर लिया भाई? बस यही से शुरू होता है मेंटलिज्म की फैसिनेटिंग दुनिया। मेंटलिज्म बेसिकली एक ऐसी परफॉर्मेंस आर्ट है जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे, मेमोरी और सजेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके थॉट्स को पढ़ सकते हैं और इसी दुनिया का एक जाना पहचाना नाम जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ ना, वो है सुहानी शाह का। जी हाँ, सुहानी शाह जो आ रही हैं आपकी कतर में लाइव, आप उनको देखेंगे परफॉर्म करते हुए 25th of September को। मार्क योर डेट्स बिकॉज ये मौका ना खोने वाला नहीं है, क्योंकि सुहानी शाह ने बहुत कम उम्र में ना मैजिक की दुनिया में ना कदम रखा और धीरे धीरे मैजिक से आगे बढ़कर मेंटलिज्म की और अपनी पहचान बनाई है। उनके परफॉर्मेंसेस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि हमें सिर्फ सरप्राइज नहीं करती है वो, बल्कि हमें अपने ही माइंड और बिहेवियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है यार। वाकई में अगली बार अगर कोई बोले ना आई कैन रीड योर माइंड, तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दिमाग में कैसे घुस गया, बल्कि सवाल ये होना चाहिए मैंने अपने माइंड के बारे में ऐसा क्या रिवील कर दिया जो मुझे खुद पता ही नहीं चला। देखिए, सोचना समझने की बात है। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
1: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

इमेजिन कीजिए कि सुबह के 6 बजे जब दोहा प्रॉपरली उठा भी नहीं होता है और आप निकल चुके हैं एक अनफॉरगेटेबल ओशन एडवेंचर पर। डेस्टिनेशन है अल रुवेसी, दोहा से अराउंड 1 घंटे का ड्राइव है और यहाँ से शुरू होती है आपकी व्हेल शार्क स्पॉटिंग विद कूल कतर। जी हाँ, बोट जैसे ही ओपन सी में पहुंचती है तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है क्योंकि सामने आ सकती है ओशन की सबसे जेंटल एंड जायंट वाली शार्क, व्हेल शार्क्स। यस, यू हर्ड दैट राइट यार, व्हेल शार्क्स को आपको स्पॉट करना है तो जाना तो बनता है। और सबसे अमेजिंग पार्ट जो आपको इनके साथ मिलेगा दैट इज कि आप इनके साथ स्विम भी कर सकते हैं एंड एक सेफ और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं एंड मतलब परफेक्ट एक जो पैकेज है ना वो ले सकते हैं। तो भाई देर किस बात की है, 6 घंटे का ये एडवेंचर ट्रिप है, जून से सितंबर के सीजन में ही अवेलेबल होता है हर साल, जहाँ पे आपको स्नैक्स भी मिलेंगे, रिफ्रेशमेंट्स भी होंगी और सेफ्टी इक्विपमेंट भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपके अंदर का भी थोड़ा सा एडवेंचर और समुद्र के साथ एक मैजिकल मेमोरी बनाने का क्रेज जाग रहा है ना, तो बस उसको जगा के रखिए क्योंकि कूल कतर के साथ बुक कीजिए आज ही अपना व्हेल शार्क एडवेंचर और इस वीकेंड एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको?
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर, सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रुपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,000।
2: हेलो
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको?
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।

0: पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
0: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
0: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रुपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
0: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
0: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
2: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
0: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
0: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
0: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर
2: मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
1: कुकड़ों को
0: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live.

0: शादी की एनिवर्सरी पर आदमी क्या करता है? बीवी को बोलता है, सुन रही हो जानू, आई लव यू। बीवी बोलती है, सुन लिया, अब गिफ्ट कहाँ है? लेकिन पापा जॉन्स की 20th एनिवर्सरी पर ना सीन ऑपोजिट है। आप गिफ्ट दोगे नहीं, लेके जाओगे। सिर्फ 50 रियाल का पिज्जा खाओ और जीतो टोटल 2,00,000 कतरी रियाल तक, मतलब इतना पैसा कि आप अगले 20 साल तक अपनी बीवी को गिफ्ट दे सकते हो। और इसके अलावा मौका मिलेगा आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, वो भी फ्री पिज्जा का। मतलब कि 365 डेज में आपको जो बीवी का जो ताना मिलेगा वो यही मिलेगा कि आज खाना नहीं बनेगा, पापा जॉन्स है ना।
1: Stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1, it's hot.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

चोरी चोरी टनना टनना छुपके छुपके मैं बात कर रही हूँ कि भाई चोरी चोरी छुपके छुपके आपके दिमाग में घुसने आने जा रही है सुहानी शाह द मेंटलिस्ट लाइव इन कतर जल्द ही आ रही है जो आपके दिमाग पे कब्जा कर लेगी और आपको हाईजैक करके सारे आंसर्स निकाल लेगी। तो भाई अपने आप को थोड़ा सा यू नो क्लियर माइंडेड लेके आना क्योंकि आप देखने वाले हैं एक ऐसे इंसान को जो मेंटलिस्ट तो है ही है लेकिन उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में शुरू कर दी थी मैजिक। यस शी इज द बेस्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस मौके का फायदा उठाइए और आए तो मैं आपको बता दूं 25 सितंबर को आप आ सकते हैं इन्हें देखने QNCC में एंड इसकी टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। जी हाँ स्नूनो सिटी या फिर क्यू टिकट्स पे आप अपनी टिकट्स बुक करवा सकते हैं। तो भाई ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बिकॉज कतर कैलेंडर प्रेजेंट्स सुहानी शाह लाइव इन कतर स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर एंड प्रेजेंटेड बाय आईपे एसोसिएट पार्टनर डेयरी क्वीन एंड पापा जॉन्स रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर एंड पार्टनर्ड बाय डाइसू जापान एंड होम्स-आर-अस रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू इवेंट पार्टनर क्यूब and media partner rehab media production partner symphony branding partner brand arts marketing partner q squad and ticketing partner snoonu city to bhai der kis baat ki hai jaldi se ticket book karwaiye aur enjoy kariye ek amazing si sham aur ek amazing tarike se bas bane rahiye mere sath for more updates stay tuned with us only on 89.6 mirchi 1 and 7

देखिए ये घड़ी मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि समय खत्म हो चुका है ईशा, अब तेरे जाने का समय आ चुका है। और इसी बात पे ना थोड़ी सी लाइनें आपको सुना दूं। मुलाकात चाहे छोटी सी हो, मुलाकात चाहे छोटी सी हो, यादें रह जाती हैं, बातें खत्म हो जाएं पर स्माइल्स रह जाती हैं। तो आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए अंदाज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीकेंड वीकेंड वाइब्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन 89.6 मिर्ची ऑन इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
2: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। I always look at monsoon के ये बस उनके आंसू हैं, तो we have to पहुंच जाए जल्दी तो क्या। But I know कि रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे करण जोहर, who spoke like a true blue मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: जानम।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: क्या बताऊँ अब, मेरे बंदे ने आज फिर से मुंह लटका रखा है।
2: अरे क्या कर रहे हो मैडम, जल्दी से उसका मुंह हुक से उतारो। मुंह को लटकाते नहीं, फ्रिज में रखते हैं। बाहर रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और पुलिस भी आसानी से ढूंढ लेगी।
3: I'm joking, mama.

0: कुछ फिल्में ना आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट लेके आती है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। एंड यस, अगर आप नो एंट्री के फैन रहे हैं तो आपको पता होगा कि दाल चावल के अलावा लोग जो हैं वो बिरयानी की तलाश में भी बाहर निकलते हैं। लेकिन फिलहाल तो मैं बिरयानी की बात कर ही नहीं रही, मैं तो दाल चावल अपने कंफर्ट फूड की बात कर रही हूँ यार, जिससे मैं पर्सनली कभी बोर नहीं हो सकती। क्योंकि मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कांट सर्वाइव विदाउट। आप डेली बिरयानी खाकर तो मजा नहीं कर सकते ना, पेट तो कभी तो खराब हो ही जाएगा आपका। ठीक वैसे ही कुछ फिल्में होती हैं जो आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट दे जाती हैं। आप उन फिल्मों से कभी बोर नहीं हो सकते। इनफैक्ट आप किसी भी मूड में हो, किसी भी जोन में हो, बस वो फिल्म लगाएंगे और एक बोलते हैं ना कि यू गो बैक टू योर होम, मतलब वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई आपके लिए वो कंफर्ट फिल्म कौन सी है जिसको आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's me. Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।

0: में करना क्या होगा?
1: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
0: मैं।
1: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
0: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
0: फाइन।
1: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
0: मिलता है।
1: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
0: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
1: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
0: इस बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
1: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं। आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
0: क्या बकवास कर रहे हैं?
1: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते हैं पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
0: हेलो
1: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
0: हाँ, हु आर यू?
1: सर मनीष।
0: हु आर यू?
1: सर मनीष, कॉलिंग फ्रॉम
0: .com. How dare you call me?
1: Okay, okay, सर आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: द मेंटेनेंस सुहानी शाह लाइव।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: कुछ फिल्में ना मम्मी के प्यार के जैसे होती हैं, एवरग्रीन फॉर यू।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और जैसे आपकी मम्मी का प्यार आपके लिए अलग है, वैसे ही हर इंसान की मम्मी का प्यार उसके लिए अलग है। एंड ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट भी कुछ इसी तरीके से चलती है यार। क्योंकि अगर आपको कोई फिल्म पसंद है तो दूसरे को वो फिल्म पसंद हो जरूरी नहीं, बट उसकी पसंद कुछ और भी हो सकती है। ये तो बड़ी ही बेसिक सी बात कर दी श्रुति, लेकिन कभी कभी हम ये बेसिक्स भूल के सामने वाले को जज करने लगते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा है कि भैया आपके पसंद की बात करेंगे। आई वेंट डाउन टू माई ऑफिस पीप्स और मैंने उनसे पूछा कि भाई वो कौन सी फिल्म है उनके लिए जिससे वो कभी बोर नहीं हो सकते, हर बार उसी लेवल पे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं वो। सो अर्जित इज विद मी।
3: गोविंदा की कोई भी फिल्म आप उठा लो तब आपको बहुत अच्छी लगती थी, अब शायद आपको एम्बैरेसिंग / क्रिंज लगे। प्लस डायलॉग्स डॉली डॉली डॉली डॉली डॉली और एक टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, पता नहीं वो आदमी क्या करता था, एक पूरी फिल्म ऐसे बात की उसने। सो गोविंदा और गोविंदा की सारी फिल्में।
0: क्या बात है, आई आई कैप्टन, मुझे भी गोविंदा की कोई भी फिल्म किसी भी वक्त दिखा दो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। इनफैक्ट अगर कोई लड़का मुझे इम्प्रेस करना चाहता है तो हम गोविंदा की फिल्मों पे मूवी मैराथन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, वैसे अभी और भी कुछ दोस्तों से बातचीत की है अबाउट द सेम, बट वो कॉन्वर्सेशन लेकर आऊंगी कुछ ही देर में। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: देखो प्यार में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन प्यार से कभी आपका मन नहीं भर सकता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और ठीक वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक फिल्म ऐसी होती है जिससे उसका मन कभी भी नहीं भर सकता। और आज आपकी कुछ ऐसी ही फेवरेट वाली फिल्मों की बात कर रही हूँ। सो आई वेंट डाउन टू माई ऑफिस पीप्स, नाउ कृष्ण इज विद मी। बताओ दोस्त, तुम्हारे लिए तुम्हारी वो कौन सी फेवरेट वाली फिल्म है जो तुम कभी भी देख सकते हो?
3: ये दो फिल्म है जो मैं कभी भी देख सकता हूँ। पहली फिल्म है पार्टनर, क्योंकि उसमें गोविंदा और वो सलमान की वो जो केमिस्ट्री पूरी रहती है ना, बड़ी मजेदार सी थी। और वो इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, वो हमेशा खुशी मुझे उस मूवी को देख के होती है। और दूसरी फिल्म है रब ने बना दी जोड़ी, तानी पार्टनर,
0: क्या बात,
3: जो वो पूरा केमिस्ट्री रहता है, आ हा मजा ही आ जाता है। और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे उस पूरी मूवी का लगता है, सूरी पापे का जो दोस्त होता है बॉबी, मुबारक बधाइयां पचा के सूरी पापे को जो ट्रांसफॉर्म करता है, वो प्रोसेस बड़ा मजेदार रहता है। तो ये दो फिल्म मैं कभी भी देख सकता हूँ, मजा आता है, दिल खुश हो जाता है।
0: तो आप समझ सकते हैं लोग अपनी उस फेवरेट फिल्म की बात करते करते ही कितने अच्छे वाले जोन में चले जा रहे हैं। तो फटाक द चिटाक आप भी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कीजिए और अपनी फेवरेट फिल्म के बारे में मुझे जरा बताइए। टिल देन एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था। सारे बादल नीचे आ चुके। And उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है। देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's out.
0: Hollywood Boy Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, It's Hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी हाय। सो ये वाली जो दो प्रजातियाँ हैं वो क्रिकेट लवर्स के मद्देनजर डिसाइड की जा रही हैं, जिसमें पहली प्रजाति के जो क्रिकेट लवर्स हैं बाबू मोशाय, ये इंडिया स्पेसिफिक लवर्स हैं। मतलब अगर मैच इंडिया का हो तभी ये अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने नजर आएंगे, या फॉर दैट मैटर स्टेडियम में जाके मैच देखना चाहेंगे। लेकिन जो दूसरी प्रजाति के महानुभाव है, ओहो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की चूल्हे इनके अंदर क्रिकेट वाली, क्योंकि ये टूर्नामेंट कोई भी हो, मैच किसी का भी हो, एक एक बॉल की खबर रखते हैं। और गलती से अगर आपने इन दूसरी प्रजाति वालों के साथ क्रिकेट कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की तो भैया आपको अपनी औकात याद आ जाएगी और आपको ABC ऑफ क्रिकेट एक बार फिर से सीखने की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप बताइए इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं आप? MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पर कनेक्ट करके बाकी बातें कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी? फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

0: ऐसी अप्रोच वाली मूवीज की कमी है हमारी इंडस्ट्री में।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशा, इससे पहले कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ विमेन सेंट्रिक इश्यूज पे बनने वाली फिल्मों के बारे में। और आज जो पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं पांच फिल्मों को डिस्कस करने वाली हूँ, दीज आर बेसिकली इंडियन शॉर्ट फिल्म्स जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डालना चाहिए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मूवी चटनी, जिसको डायरेक्ट किया है ज्योति कपूर दास ने। इसका स्क्रीन प्ले लिखा था ज्योति कपूर, इसका चोपड़ा और अवनीश मिश्रा ने मिलकर और एक्टिंग की है फिल्म में टिस्का चोपड़ा, रसिका दुग्गल और आदिल हुसैन ने। सो द फिल्म पीप्स इनटू द सीमिंगली मॉरल वर्ल्ड ऑफ ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, जहां अब नए एस्पिरेशंस हैं ऑफ इंपोर्टेड कार्स एंड ऑर्गेनिक फूड। और इसी बीच एक कहानी चलती है इस महिला की जो दूसरी एक फीमेल से कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, और माइंड यू ये दूसरी फीमेल जो है वो पहली वाली महिला के पति के साथ फ्लर्ट करती नजर आती है इन अ पार्टी। उसके बाद चीजें किस तरीके से डार्क साइड लेती हैं वो जानने के लिए आपको ये फिल्म तो देखनी पड़ेगी यार। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच चटनी ऑन Amazon Mini TV। बाकी ऐसी ही और चार फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट इन अ वाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग,
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके दो मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी।
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
2: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
1: आप किससे बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो

0: मैं क्या सुधरू यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ साहब।
1: आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं, बिल्कुल नकली तरह से आप मेरे से
0: नहीं,
1: बातें
0: नहीं,
1: कर रहे
0: नकली तरीके से क्या
1: नहीं असली मुझे दिख नहीं असली औकात नहीं कर रहे हैं।
0: नहीं मैं मेरी वाइफ है यार,
1: वो तो कोई बपौती है क्या?
0: नहीं नहीं बात नहीं तो तमीज सीख ले, नहीं तमीज
1: नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है
0: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया।
1: Okay.
0: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट इज टाइम कि हम आज के गोल अपडेट सुने. वेल आज पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार इज फॉर 588 कतरी रियाल, वेर एज पैम्प 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2755 कतरी रियाल. पैम्प 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5440 कतरी रियाल, वेर एज पैम्प 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16816 कतरी रियाल. पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 62447 कतरी रियाल. सो वेल, गोल्ड लेना हो या ना लेना हो, लेकिन अपडेट्स पर हमेशा नजर रहनी चाहिए. विद दिस स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज योर सिंपली आफ्टरनून ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर. बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स
2: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे.
1: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: It's hot.
1: ऐसी अप्रोच वाली फिल्में हमारी इंडस्ट्री में और आनी चाहिए।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: हाँ जी बाबू मोशाय, मैं बात कर रही हूँ फीमेल सेंट्रिक इश्यूज को लेकर बनी फिल्मों के बारे में, जिसकी कमी ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री में है। बट आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं आपके वॉच लिस्ट में कुछ अमेजिंग शॉर्ट फिल्म्स ऐड करने वाली हूँ विच रिवॉल्व अराउंड विमेन सेंट्रिक इश्यूज। सो सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट द मूवी चटनी। अब नंबर दो पे बात करते हैं द ब्रोकन टेबल के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, डायरेक्टेड बाय चिंतन सारदा। एंड इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह है एज गिरी और उनके साथ है रसिका दुग्गल, हु इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ दीप्ति इन द मूवी। सो बेसिकली गिरी का जो कैरेक्टर है, ही इज एन अल्जाइमर पेशेंट जो अपनी जिंदगी की सारी चीजें भूल जाते हैं अदर देन हिज वाइफ। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति इज अ बडिंग साइकोलॉजिस्ट जिसकी लाइफ में उसकी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं, बट वंस शी मीट्स गिरी वो उनकी जिंदगी से बहुत सारी ऐसी चीजें सीखती है, अपने लाइफ में इनकलकेट करती है, जिसके बाद इस मूवी का एंड बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग लगता है। नहीं देखी है मूवी तो अपने वॉच लिस्ट में इसको जरूर डाल लो। नाम है द ब्रोकन टेबल। चलो नंबर तीन पे आप बात करते हैं अबाउट द फिल्म नीति शास्त्र, जो प्राइम वीडियो पे आपको मिलेगी। दिस मूवी रिलीज इन द ईयर 2018, जिसमें तापसी पन्नू है, विकी अरोड़ा है और ये फिल्म एक सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की है, रोशनी है इसका नाम, प्लेड बाय तापसी पन्नू ऑफकोर्स, जो औरतों को मदद करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। हाउएवर इसकी जिंदगी एकदम से उथल पुथल हो जाती है जब इसका खुद का सगा भाई एक क्राइम कमिट करता है एंड देन शी इज टोर्न बिटवीन हर इंटेग्रिटी एंड हर फैमिली। इंट्रीगिंग राइट? तो अपनी वॉच लिस्ट में नीति शास्त्र को भी जरूर ऐड कर लेना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी के दो फिल्मों को डिस्कस करेंगे। राइट हियर ऑन मिर्ची, यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
2: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

ब्रेड पकौड़े की कसम रणबीर कपूर को रणवीर सिंह की तरफ से मैं थैंक्स बोल देती हूँ यार। अगर ब्रेड पकौड़े की कसम से आप ये नहीं समझ पाए कि मैं फिल्म बैंड बाजा बारात की बात करने वाली हूँ बाबू मोश राय, तो क्या खाक फिल्मी है आप? जरा इंटेक अपना बढ़ाइए मेरे शो का, देखिएगा फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी किस तरीके से फिल्मी आपा आपके अंदर घुसता है। बट यस, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म जो रिलीज हुई थी साल 2010 में, जिसको डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने और जिस फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेब्यू किया था, उसके लिए मैं रणबीर कपूर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये फिल्म सबसे पहले रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी, बट ही डिडंट वांट टू प्ले बिट्टू। लेकिन बाद में जब ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो रणबीर कपूर को रिग्रेट हो रहा था अपने उस डिसीजन पे। बट कोई नहीं, उनकी वजह से रणवीर सिंह को इतना अल्टीमेट लेवल का डेब्यू का मौका मिल पाया यार। बाकी अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो लेट मी टेल यू, फिल्म में रेडियो मिर्ची का जिक्र भी है, और सिर्फ जिक्र नहीं, बेसिकली जब बिट्टू और श्रुति के बीच में वो कांड हो जाता है ना, और बिट्टू श्रुति को लास्ट टाइम उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो ही इज लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची, एंड स्पेसिफिकली हमारे आरजे नवेद बोल रहे होते हैं उनके कानों में। पता था आपको? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट मिर्ची।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
1: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में. पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी. बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपल्सरी था. लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है. शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है. हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते. हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है. शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है. और हम वही करने वाले हैं. हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20. माय नेम इज सुरेन सुंदरम. एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है. हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है. शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतंदा, एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20.
4: नंबर 20.

कभी नोटिस किया है कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन, दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

बेशरम रंग एफ्रोबीट और लैटिन इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी में चली जाती है, लेकिन शिल्पा राव की आवाज, यार वो तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में गजल वाली नजाकत है। एंड देन देयर इज दिस, क्योंकि तो

तुमियों में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है कि आपको अच्छी तरह मालूम है।

चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, पर इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हाँ जी कौन
1: हेलो किससे
2: बात करनी है
1: भैया
2: किससे बात करनी है
1: भैया नंबर चेक करके
2: नंबर चेक करके दोबारा मिला पागल
1: पागल
2: पता नहीं कौन बोल रहा था
3: इको आ रहा है इको
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो जय साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ
1: भैया
2: नंबर देख के मिला
1: हेलो
2: हेलो
1: भैया क्यों
2: परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार
1: पता नहीं कौन
2: है फोन करे जा रहा है अबे पागल हो गया क्या यार महंगा पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास
1: पागल
2: कहीं का
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर
2: जय साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ नंबर देख के मिला
1: हेलो
2: हेलो
1: भैया
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार पता नहीं कौन है फोन करे जा रहा है
1: भैया
2: पागल हो गया क्या यार महंगा पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास
1: पागल

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms.
3: Only on Mirchi. It's hot. Number 17.

मुबारक हो अखिल सचदेव, अब आप आवारापन 2 की इस मेमोरेबल साउंडट्रैक का हिस्सा बन गए हैं। पिया घर आया इस हफ्ते है नंबर 17 पर, और ऑनेस्टली आवारापन 2 सुनते ही मुझे लगा था कि यार अगर इमरान हाशमी वापस आ रहे हैं तो शायद मोहित सूरी भी इनके साथ ही आ रहे होंगे। वो रियूनियन तो नहीं हुआ, लेकिन मोहित सूरी का एक और यूनियन होने वाला है, और ये वाला काफी अनएक्सपेक्टेड है। राम गोपाल वर्मा यानी RGV, क्योंकि RGV कहानी लिख रहे हैं, मोहित सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव इट, यशराज फिल्म्स। यानी एक तरफ वो फिल्म मेकर जिसने हिंदी सिनेमा के अंडरवर्ल्ड को एक पूरी सिनेमैटिक लैंग्वेज दी थी, दूसरी तरफ वो फिल्म मेकर जिसका सिनेमा अक्सर डार्कनेस के बीच भी दिल की धड़कन सुनता है, और तीसरी तरफ YRF जिसका नाम सुनते ही गैंगस्टर सिनेमा तो पहला जॉनर नहीं आता है दिमाग में। और शायद इसी में इस कोलैबोरेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। RGV जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया कैसे काम करती है, मोहित सूरी जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर लोग कैसे टूटते हैं। RGV ने दुनिया लिखी है, मोहित उस दुनिया के लोगों को पील करवा सकते हैं। और RGV ने खुद कहा है कि मोहित सूरी ने उनके स्क्रिप्ट को अपने फ्रॉम द हार्ट कैरेक्टर्स, इमोशनल म्यूजिक और अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्शन के साथ और आगे बढ़ा दिया है। ये मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि RGV खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया किसी दूसरे फिल्म मेकर के हाथ में सौंप रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को धुरंधर से भी बड़ा बताया है, एंड कॉन्फिडेंस के लिए उनको सल्यूट तो करना पड़ेगा। लेकिन नंबर 16 पे है धुरंधर का ही शरारत, एंड उसके बाद इस कंपैरिजन को हम वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि असली जवाब ये नहीं है कि फिल्म धुरंधर से बड़ी होगी कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या मोहित सूरी एक राम गोपाल वर्मा गैंगस्टर स्टोरी को मोहित सूरी की फिल्म बना सकते हैं बिना उस RGV DNA को खोए हुए जिसने इस जॉनर को इतना स्पेशल बना दिया था। डूड, जस्ट थिंक ऑफ सत्या एंड कंपनी एंड यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन 12 साल पहले मोहित ने एक विलन में भी एक रिफॉर्म्ड गैंगस्टर की कहानी सुनाई थी, एक ऐसा आदमी जो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है लेकिन अपना पास्ट नहीं छोड़ पाया था। ही वाज लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर।

0: विद द साउंडट्रैक ऑफ एक विलन. ये गाना अंकित तिवारी की आवाज में है. दिस इज माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक. मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा बिकॉज इस गाने को आप बखूबी जानते हैं.
1: टॉप 20 रीवाइंड.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी
3: क्या
4: एग्जाम एक प्रेम कथा
5: मिर्ची इट्स हॉट
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. See you at the show.
8: The Mentalist Suhani Shah live.

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया। और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, एंड शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा। और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बाल्की और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बाल्की ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं, क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, रितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल क्लिम्स किसी सुपर हीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एआर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर ये है जय जय राम। नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: द लेट इरफान खान से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इज इट दिल्ली, इज इट मुंबई?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 12.

समझो ना, कहानी का नाम है वन, लेकिन शुरुआत हो रही है रोमांटिक गाने से। इसे ही तो साइंस कहते हैं बाबू भैया। पिछले हफ्ते नंबर 14 पर डेब्यू किया था और इस हफ्ते दो स्पॉट्स ऊपर उठा हुआ है। क्लियरली एल्गोरिथम काम कर रहा है। वैसे बॉलीवुड में आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइंस शायद यही है, एल्गोरिथम। हम क्या सुनते हैं, क्या स्किप करते हैं, क्या रिपीट करते हैं, किस सिंगर को बार बार लूप पे सुनते हैं, ये डेटा कलेक्ट होता है, पैटर्न समझा जाता है और फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हमें आने वाले गाने मिलते हैं। साउंड्स परफेक्ट राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर म्यूजिक एक परफेक्ट एल्गोरिथम में बिठाया जा सकता तो क्या हमें वो फेवरेट गाने मिलते जो किसी एल्बम में नंबर 5 या 6 पे थे? नहीं ना। तो चलो 10 साल पीछे चलते हैं, 2016 में एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था बार बार देखो। कटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उस साउंडट्रैक में एक गाना था काला चश्मा। इट वाज अ बैंगर, फेमिलियर साउंड, इंस्टेंट हुक, डांस फ्लोर, शादियों में बज रहा है, रील्स में चल रहा है, एल्गोरिथम के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाना और वो हिट भी हुआ। लेकिन उसी एल्बम में एक और गाना आया, खो गए हम कहां, वाय इंटिमेट, हेडफोन्स वाला गाना, ऐसा गाना जो शोर में नहीं तन्हाई में काम करता है। और फिर मुझे इसकी वजह से इतने सारे गाने याद आए, वेकअप सिड का एक तारा, अनजाना अनजानी का टाइटल ट्रैक, फिर ले आया दिल फ्रॉम बर्फी। ये ऐसे गाने जो किसी एल्गोरिथम के हिसाब से ऑब्वियस ब्लॉकबस्टर मटेरियल नहीं लगते, लेकिन ये गाने सिर्फ हिट नहीं होते, ये आपके अंदर एक घर बना लेते हैं। और शायद यही एल्गोरिथम हार जाता है। डेटा बता सकता है कि हम क्या सुनते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि हम किस गाने से प्यार करने वाले हैं, वो कौन सा गाना है जो हमने रात को सुना है। पैटर्न प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फीलिंग नहीं। और शायद इसलिए ग्रेट म्यूजिक वो नहीं है जो एल्गोरिथम हमारे लिए चूज करता है, ग्रेट म्यूजिक वो है जो हमारे अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर करवा देता है जिसका डेटा अभी तक बना ही नहीं है। तो इसलिए जिस गाने की मैं बात कर रहा था, वही गाना आज मैं आपको सुना रहा हूँ। दिस इज जसलीन रॉयल एंड प्रतीक कुहाड़ विद खो गए हम कहां। Top 20 Rewind।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
1: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
2: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है, फिल्म अच्छी लगे या बुरी लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं, नाम है उनका जयदीप अहलावत और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता, अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता उस स्क्रिप्ट। एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, ऐसे ही नॉर्मल नहीं, नहीं कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर, हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको डायलॉग कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला है, आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइव, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कंफ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में, दिस इज ऐसी मेरी वाइब।
2: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: हेलो
3: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ. आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है. अब ये पे नहीं कर रहा आपको?
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का. एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23
3: एक सेकंड सर. सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए.
2: हाँ जी हाँ जी.
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं.
2: बिल आया था 2200 रूपए का?
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ. एक सेकंड रुकिए, ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा.
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ. नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर. इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है.
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर. 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की. सर आपने जो फोन पे बात करी थी किससे? झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती.
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले. आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है. अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर. जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप.
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर. आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर. आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता. वो इतनी तेज भागेगा मीटर. आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है. देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं.
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई.
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ. 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार. आप फोन काट देते हैं बार बार यार.
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार. आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में.
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार.
3: तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार. फिर मीटर तेज भाग रहा है, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए. आपका मीटर तेज सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है. सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया है. मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला.
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live.

0: ये गाना आया तो 2026 का, लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 2005 में। एक सिंगिंग रियलिटी शो में एक लड़का विनर बना था और दूसरा सिक्स्थ आया था। विनर का नाम था काजी तौकीर और सिक्स्थ प्लेस पर आया था अरिजीत सिंह। आज काजी बिग बॉस के घर में है और एक नई जनरेशन उन्हें फिर से प्यार दे रही है। लेकिन अरिजीत, आज हम उनका नाम उस लिस्ट में लेते हैं जहां प्लेबैक लेजेंड्स बैठे हुए हैं, रफी, किशोर, सानू, उदित, सोनू और अब अरिजीत। फनी है ना, कभी कभी वक्त नंबर्स का मतलब ही बदल देता है। और अब जब अरिजीत अपने प्लेबैक करियर से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, हम एक अजीब से मोमेंट में हैं। गाने अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये वो गाने हैं जिनकी कमिटमेंट अरिजीत ने रिटायरमेंट लेने से पहले ही की हुई थी। यार हमें नहीं पता कि अगला अरिजीत का गाना कब आएगा। जब आ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं और शायद इस वक्त उनकी कहानी का एक हिस्सा वो इंसान शायद सबसे अच्छे से समझता है जो 2005 में उनसे आगे निकल गया था, काजी तौकीर।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। और उसकी चीज मुझे यही पसंद है कि आप देखो कभी भी वो शोज करता है, ऐसे वो करता नहीं, यू नो दिस इज माय कार, यू नो आई एम समवेयर, यू नो ऑल दोस थिंग्स, बहुत सिंपल। स्कूटी पे घूमता है, दूध लेने जाता है मुर्शिदाबाद, दूध दूध सब्जी वब्जी खरीद।

0: अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा हूँ 17 तब था वैसा ही आज भी।
1: उसके अंदर करप्शन नहीं, ऑनेस्ट। हिंदुस्तान में क्या मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में आज की डेट में अरिजीत जैसा ना कोई है, आई डोंट थिंक कोई आएगा।
2: शायद इसलिए अरिजीत की आवाज सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं बनी, वो हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर बन गया। और एक दिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक खामोश हो जाएगा। वो वक्त आ रहा है, लेकिन म्यूजिक कभी रिटायर नहीं होता। एक आवाज रुकती है तो कोई दूसरी आवाज उसकी जगह ले लेती है। नंबर 5 पर कुणाल खेमू की फिल्म वाइब से अमित त्रिवेदी की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, दिस इज रातों में आना। नंबर 5।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 4.

0: आंखों से तूने ये क्या कह दिया, और मुझे लगता है कि इस गाने के टॉप 5 तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन इसका म्यूजिक नहीं है, फैमिलियरिटी है। क्योंकि गाना चलता है तो जहन में आते हैं आमिर खान, रानी मुखर्जी और 90s का वो साउंड। देखो कुछ चीजें सुनते ही हमारी मेमोरी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, और बॉलीवुड फैमिलियरिटी को बहुत अच्छे से समझता है। पुराने गाने रिक्रिएट करो, पुरानी फ्रेंचाइजीज को वापस ले आओ, पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा स्क्रीन पे खड़ा कर दो, क्योंकि फैमिलियरिटी में रिस्क नहीं होता और ऑडियंस पहले से इन्वेस्टेड होती है। नंबर 3 पर बाय द वे है चुनरी चुनरी, इसका एक और एग्जांपल बाय द वे, जहां एक पुरानी याद को नए जमाने के लिए दोबारा पैकेज किया गया। देखें इसी बॉलीवुड में कभी कभी एक ऐसा फिल्म मेकर आता है जो फेमिलियरिटी को साइड में रखकर इतना ओरिजिनल साउंड ट्रैक क्रिएट करने की कोशिश करता है कि गाने फिल्म को समझने का दूसरा रास्ता बन जाते हैं। रामायण का जो नया गाना आया है उसे सुनते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार रणबीर कपूर को हमने आखिरी बार स्क्रीन पर 3 साल पहले देखा था एनिमल में, और एनिमल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो रणबीर के साथ सबसे ज्यादा जो मुझे याद रहता है वो है उस फिल्म का म्यूजिक, और उस मैडनेस के पीछे एक मेथड था और ये रणबीर ने खुद बताया।
1: See, to give music for a love story is very easy. एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना is such a hard thing. हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था। अगर हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गाना लिपसिंग नहीं है, तो he could have easily recorded it after shoot. But every piece which is the 3 hour 20 minute पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले। सो एज एक्टर जब आप बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हो आपको वो टोन मिल जाता है सीन का, इट मेक्स इट इजियर फॉर यू।
0: इसलिए एनिमल में म्यूजिक सीन के बाद नहीं आता, म्यूजिक सीन के अंदर पहले से मौजूद होता है। और शायद एनिमल की कामयाबी ने संदीप रेड्डी वांगा को अब एक और चीज दे दी है, और वो है आजादी। क्योंकि उसका जो सीक्वल आ रहा है ना एनिमल पार्क, शायद ये आजादी कितनी दूर जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पहली फिल्म को इंडिकेशन है तो म्यूजिक चीर फाड़ करने वाला है। अगर मुझे एनिमल के उस पूरे इमोशनल लैंडस्केप में कोई ऐसा गाना ढूंढना है जो पूरी कहानी को समेट ले, तो मेरे लिए वो ये गाना है बी प्राक की आवाज में। इट इज माय पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: Only on Mirchi. It's hot. Number 2.

0: नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर देखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीज करना है। मुझमें कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज दिस इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई नो लाइक इट सो इट वाज लाइक अ फायर टू काइंड ऑफ आल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग, जहाँ तक कैरेक्टराइजेशन हो। एंड देन थैंकफुली वी स्टम्बल अपॉन दिस व्हिच टच्ड अपॉन सम रियली सेंसिटिव थिंग्स, यू नो, लूजिंग समवन यू लव, सो ए वेरी पेनफुल मोमेंट्स, एंड आई काइंड ऑफ इट काइंड ऑफ सेशिएटेड मी एज एन एक्टर।
0: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था। और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है बॉक्स ऑफिस के लिए, नॉस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया। एंड इजंट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज। फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है। नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। दिस इज तेरा मेरा रिश्ता।

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यही खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सुरेश, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
2: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है, क्या करूं?
3: ब्रो यार, इट्स सो सिंपल, कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे, एवरीवन विल नो योर वैल्यू।

0: अरे अब तो दुनिया मान रही है कि हमारा कतर टेक्नोलॉजी एंड एआई का दुनिया का एक नया हब बन रहा है। यस, टेक्नोलॉजी एंड एआई लवर्स के लिए कतर में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कहा जा सकता है। कंप्यूट इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट ज्यूरिसडिक्शन कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कतर ने टॉप स्पॉट हासिल किया है। हाँ जी, इसमें हमारी रैंकिंग 1 आई है, 77.4 आउट ऑफ 100 का स्कोर मिला है। और ये बता रहा है कि जब लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आए, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट करने का मामला है, तो कतर टीयर 1 यानी कि एडवांटेज वाले स्टेज पर है। एंड हमने यूएस के लोवा, इंडियाना, टेक्सस और यूएई जैसे मेजर टेक हब्स को पीछे छोड़कर ये पोजीशन हासिल करी है। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझाऊं तो यही कहूंगा, नंबर 1 रैंक का मतलब कतर में ना जितनी भी फास्ट एंड स्मार्ट डेली सर्विसेज हैं उसकी वजह से हम ये रैंकिंग में आ पाए। कतर का एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क जितना स्ट्रांग है उससे ज्यादा फास्ट हमारे डेली लाइफ के एप्स, गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि मेट्राश, बैंकिंग सिस्टम यहां का एकदम फास्ट है, स्मार्ट सिटी सिस्टम काम कर रहा है, बफर टाइम 0 है, आपकी स्पीड इंटरनेट की डबल है, ट्रैफिक एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपग्रेड हो रहा है, एंड बहुत सारी जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बन रही है, एंड डिजिटल सिक्योरिटी भी जबरदस्त। एंड इसका मतलब ये कि हम एक सिक्योर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहे हैं जहां पर हमारा पर्सनल डेटा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब बिल्कुल सेफ है। तो सिंपल वर्ड्स में कतर हमारा तेजी से तरक्की कर रहा है। थैंक यू कहना चाहूंगा कतर की इस हुकूमत को जो हर वक्त हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें लेकर आती है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट मिर्ची। इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा, नवीन वाला मुर्गा,
1: मिर्ची मुर्गा। हेलो,
2: इज दैट मिस्टर विपुल?
1: यस
2: मिस्टर विपुल, हाय, आई एम अतुल कॉलिंग फ्रॉम .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: इन हैंड।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे माँज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मान देते हैं, आज चमकदार मान देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com. How dare you call me?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: अरे कमरिया ही नहीं हिलेगी सर, दिमाग हिल जाएगा।
1: जब दी मेंटलेस सुहानी शाह आपका माइंड रीड करना शुरू करेगी। 89.6 पर जीवन पर मैं हूँ आरजे मस्तमौला गौरव। एंड यार करिश्मा तन्ना का मोबाइल फोन का कोड कोई कैसे क्रैक कर सकता है? मुझे लगता कोई अपने मोबाइल फोन का कोड किसी और को बताता है। ऐसे में करिश्मा तन्ना का सबके सामने कोड क्रैक हो गया भैया, लड़की एकदम डर गई है। और सिर्फ वही क्यों, मैं तो सोच रहा हूँ कि सुहानी के सामने भेष बदल के जाऊं, अपना नाम गलत बताऊं, अपने दोस्तों के नाम गलत बता दूं तो कौन ही पकड़ने वाला है। मैंने अपनी ट्रिक तैयार कर लिया है। दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम 25th of September एंड ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर प्रेजेंटेड बाय आईपे। ऑल सेट, तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। हमारे घर में तो एकदम शादी का माहौल लग रहा है। मिर्ची ऑफिस आई है, रोज प्लानिंग स्ट्रेटजी एकदम बन रही है। कुल मिलाकर बस आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है इस पूरी शाम का मजा लेने के लिए, जहां पर सिंगर डांस डुओ भी होंगे, यानी कि सिंगर चरण एंड आसी जो कि डांस परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगाने वाली है। ये सब कुछ के बीच मेंटली सुहानी शाह की वो परफॉर्मेंस जो हम सबको एकदम से शॉक देगी वो भी होगा। हाँ जी, लेकिन इसके लिए पहले टिकट बुक कीजिए। एस सिटी सुनू पर अभी भी आपको 30 कतारी रियाल का कैशबैक मिल रहा है, जल्दी जाइए वहां बुक कर लीजिए। क्यू टिकट्स प्लेटिनम लिस्ट पर भी टिकट्स अवेलेबल हैं विद अर्ली बर्ड ऑफर प्राइजेस। तो फटाफट से अपनी टिकट बुक कर लीजिए। एक ऐसी शाम जो आपने इससे पहले कतर में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो होने जा रही है 25th September QNCC। मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर में एंड दिमाग को हिला डालेगी लड़की। मिर्ची थॉट।

0: मटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लो।

वाला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker. Yeah. Heartbeat.

0: डेस्पराडो तो नहीं, लेकिन अगर डेस्परेट हो जॉब के लिए तो एक अच्छी खबर। यस सिस्टर एंड माय ब्रदर, कतर में आपके लिए अब है जॉब ऑफर।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस हम आपको बता दें, सिविल सर्विस एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो ने जनरल टैक्स अथॉरिटी के साथ मिलकर कतर में कवादर प्लेटफॉर्म पर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज अनाउंस कर दी हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो, यानी कि बस ग्रेजुएशन किया और सोच रहे हो यार कोई जॉब लग जाए, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपके पास अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री है, तो बस आप मेल हैं या फीमेल, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या एक्सपीरियंस, ये वैकेंसीज में आप सबके लिए मौका है। कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो बस थैंक यू कह दीजिएगा और थोड़ा स्वीट्स खिला दीजिएगा, क्योंकि मैं ना चाहता हूँ यार इस कतर में सबकी जॉब लगे और लोग जॉब लगने के बाद यहाँ पर एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो आगे अफोर्ड कर पाए। मुझे यही उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाएंगे और वो कवादर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने लिए इन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज में एक हिस्सा खोजेंगे। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है। 89.6 मेरे जीवन पर इतना ही कहता हूँ, कतर में एक बार जॉब लगी ना तो फिर रिटायर हो के ही जाओगे, इतना सुकून है यहाँ। मिर्ची इट्स हॉट।

0: वैसे अभी जितनी फास्ट प्रोसेस है हम उसी से संतुष्ट है, लेकिन तो लग रहा है आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही जाएगा हमारा हमद।
1: #974 The most trending local news of the day.
0: अगर आप हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले रहे हैं तो आपकी ट्रेवल लाइफ और आसान होने जा रही है। इतनी स्मूथ, इतनी हैसल फ्री, इतनी फास्ट कि आपने सोची नहीं होगी, क्योंकि फास्ट पास सर्विस को अब शुरू किया जा रहा है। यस, एयरपोर्ट जैसे ही आप पहुंचेंगे, कैमरा की तरफ देखते ही आपकी वहां एक प्यारी सी फोटो खींचेगी, फिर आपका फेशियल रिकॉग्निशन आपको बोर्डिंग और टच पॉइंट्स पर बिना बार बार डॉक्यूमेंट दिखाए आगे निकालता जाएगा। इसके बाद आपको हीरो जैसी फीलिंग ही तो आएगी। वैसे फास्ट पास सर्विस फिलहाल के लिए सिर्फ कतर एयरवेज के साथ है, एंड फास्ट पास की सबसे खास बात यह है कि एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है जो अलाउ करता है आपको फेशियल इमेज के साथ एयरपोर्ट के टच पॉइंट्स पर बार बार डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते जाइए। हालांकि अभी सिर्फ ये कतर एयरवेज पैसेंजर्स के लिए, और बड़ी बात यह है कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वालों के ही लिए, बट आने वाले टाइम में यू नेवर नो ये सबके लिए हो जाए, तो बस तैयार हो जाइए। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस आपको जरूर करना पड़ेगा, कतर एयरवेज ऐप पर जाकर, या फिर जैसे ही आप हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नियर रो 3 के पहुंचते हैं तो वहां पर एक सेल्फ सर्विस कियोस्क, याद रखिएगा रो नंबर 3 के पास सेल्फ सर्विस कियोस्क पर आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड चीजें और फास्ट हो जाएंगी। वेल, इसका कुल मिलाकर फायदा यही होगा कि जैसे ही आप हमारे एयरपोर्ट पे चेक इन कर लोगे, सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर जाओगे, आपके पास एम्पल टाइम होगा। आप घूमिए हमारे ऑर्चर्ड की तरफ, आप जाइए सूख मतार की तरफ, आप एयरपोर्ट पे घूमते रहेंगे, एंड फाइनली जब आपकी फ्लाइट की बारी आएगी तो उड़कर कतर को याद करेंगे कि यार बड़ी फास्ट सर्विस वाला एयरपोर्ट था, हमारा कतर है ऐसा। मिर्ची इज हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: The Mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
1: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: कौन कहता है कि कतर रेल की दोहा मेट्रो लुसेल ट्रैम सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। भैया ये एंटरटेनमेंट का भी पूरा डोज है, तभी तो 6-6 अवार्ड्स अपने नाम किए।
1: #974
0: कतर रेल के बहुत सारे क्रिएटिव कॉन्सेप्ट का लोहा जो है वो दुनिया ने मान लिया और वर्ल्ड फेमस 2026 टेली अवार्ड्स में कतर रेल ने पूरे 6 अवार्ड्स इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इसमें अरब कप का सुपर कूल वीडियो बनाया गया, चेस टूर्नामेंट की शॉर्ट फिल्म थी, ऑडियंस ने इसको इतना पसंद किया कि इन्हें तो सिल्वर मिला और ब्रॉन्ज अवार्ड भी मिला है। इसके साथ साथ जबरदस्त एंटरटेनमेंट के लिए हमें और भी ढेर सारे अवार्ड मिले, लेकिन एक और अवार्ड मिला जो मैं जरूर यहां बताना चाहूंगा। एक और इंपॉर्टेंट खास अवार्ड जो कतर रेल को मिला है वो इस बात के लिए मिला है कि वीडियोज में सोशल अवेयरनेस, इको फ्रेंडली ट्रेवल और सोशल नीड्स वाले लोगों के लिए इजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया ने अब इसका लोहा मान लिया, टेली अवार्ड्स में 6-6 अवार्ड आ गए और ये बताता है कि अगली बार जब आप मेट्रो या लुसेल ट्रैम में सफर कीजिए तो ये समझिए कि आप वर्ल्ड क्लास राइड का आनंद ले रहे हैं और एक ऐसे लोगों के साथ हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं और आपको डिजिटली इतना एंटरटेन करते हैं कि पूरी दुनिया में लोग अब इनको पसंद कर रहे हैं। वेल, बाकी का जलवा तो मेट्रो दिस वे से फीफा वर्ल्ड कप के टाइम ही बन गया था। 89.6 मिर्ची वाले थॉट।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na vipa la burka.
1: Milci, burka.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
1: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है?
1: अबे किससे बात?
2: अबे किससे बात करनी है?
1: भैया नंबर चेक करके,
2: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
1: पागल
2: पागल
1: पता नहीं कौन बोल रहा
2: है, अरे पता नहीं कौन बोल रहा था।
3: इको आ रहा, इको।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो, जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
1: भैया नंबर चेक,
2: नंबर चेक के मिला।
1: हेलो
2: हेलो,
1: भैया क्यों परेशान कर रहा,
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है।
1: हैं भैया क्या?
2: अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का?
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
1: रवि है।
3: रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। अब एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें,
2: परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है।
1: भैया
2: अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का?
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या

0: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
1: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: 89.6 बिरजीवन पर मैं हूँ आरजे मस्तपाल और गौरव सैटरडे के शाम शानदार में हफ्ते का बेस्ट तो आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर पैसे बचा कर रखे हैं और कहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो मैं लेकर आ गया हूँ अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स।
1: गोल्ड अपडेट।
0: अगर आज की बात करें तो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलने वाला है 588 कतारी रियाल पर, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2755 कतारी रियाल, पैम्प 10 ग्राम इज 5440 कतारी रियाल, वहीं पैम्प 1 ounce गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार विल कॉस्ट यू 16816 कतारी रियाल एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार मिलेगा आपको 62447 कतारी रियाल पर। यह थे अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स। एंड फॉर पैम्प गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, स्विस सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड जो आपको देता है इस बात का सुकून कि हमारा इन्वेस्टमेंट जिस प्रोडक्ट के साथ है वो दुनिया का बेस्ट है। 89.6 मिर्ची 1 भाई, ये था अल फरदान एक्सचेंज गोल्ड रेट्स। मिर्ची इट्स ऑल।

0: अरिजीत सिंह, जसलीन रॉयल, हीरिये हीरिये आ और आ रही है सुहानी। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्ट फॉलो गौरव आपको बताना चाहता है, दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, एंड दिस इज ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर एंड प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस शाम का हिस्सा बनते हैं, इमेजिन कीजिए आप किसी इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा माइंड रीड कर पाने वाली लड़की को देख पाएंगे, एंड 7 साल की छोटी उम्र में पहला अपना मैजिक शो स्टेज पे किया है और कभी पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं गई, 7 साल की उम्र से ही अपनी प्रैक्टिस में लग गई। अब जिसने साधना की तरह एकदम इस विद्या को हासिल किया है वो देखने लायक तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी दुनिया में अपने डंके को बजाकर हमारे कतर की तरफ बढ़ रही हैं, एंड 25th of September QNCC में सुहानी शाह होंगी। एंड सुहानी शाह के शो की खास बात यह है कि हमने इसमें बॉलीवुड का तड़का भी लगाया, जहां पर सिंगर चरण एंड डांस करने वाली आशी बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देंगी, एंड शी इज अ वेरी रेनाउंड डांसर। बड़े बड़े सिंगर्स गुरु रंधावा से लेकर बादशाह के गानों में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, एंड मास्क गर्ल बोलकर और भी ज्यादा पॉपुलर थी। इंडियन आइडल के लेटेस्ट सीजन में वो पहुंची थी अपने इसी गाने को प्रमोट करने। तो चरण और आशी एक साथ जिस गाने में आए वो आज यहां मिर्ची पर मैं प्ले करने जा रहा हूं। ओनली 89.6 मिर्ची 1 एक्सक्लूसिव फॉर द फर्स्ट टाइम मिर्ची इट्स हॉट।
1: वो एक शख्स थी और हम दो बर्बादियां।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Ready?
6: Ready!
5: To learn?
6: Yes!
5: To play?
6: Absolutely!
5: To grow?
6: With Maserati!
7: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs!
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly.

सुनिधि चौहान, ये गाना पुष्पा का सुनाया किसने? लेकिन हमको लगता है पुष्पा अगर हमारी सुहानी के सामने आया तो वो भी झुक जाएगा, कहेगा मत खोल मेरे दिमाग के राज। फिलहाल द मेंटली सुहानी शो लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज हैपनिंग एट QNCC ऑन 25th ऑफ सितंबर, जिसकी टिकट्स आपको जल्दी से बुक कर लेनी है। ट्रस्ट मी, एक एंटरटेनिंग शाम होने वाली है जहां पर आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। बहुत कॉन्सर्ट देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग शोज देखे होंगे, क्लब पार्टीज में गए होंगे, लेकिन ये मेंटली सुहानी शाह के साथ ऐसे घंटे बीतने वाले जिसमें आप इतना कुछ देख के शॉक्ड होगे, कहोगे कैसे हो रहा है। यही तो है ये दुनिया मेंटलिस की। तो अगर अभी तक आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, दिस इज द राइट टाइम। कतर पहली बार लेकर आ रहे हैं हम, एंड द मेंटलिस सुहानी शाह लाइव इन कतर ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर प्रेजेंटेड बाय आईपे, एंड दिस इज हैपनिंग, एंड आपको इसका हिस्सा जरूर बनना है। जितनी जल्दी हो सके टिकट्स बुक कर लो। एससीटी स्नूनू पर अभी भी अर्ली बर्ड ऑफर पर 30 कतरी रियाल का कैशबैक है, एंड साथ ही साथ क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट पर भी ये टिकट्स मिल रही है। मस्त बोलो और इतने कहेगा आप तो आओ, अपने दोस्तों को लाओ, तभी तो मजा आएगा जब आपके किसी दोस्त का राज वहां पर्दाफाश हो जाएगा। 89.6 मिर्ची 1 पर मी सिंह टर्मोबाइल लौटेंगे कल शाम एक बार फिर से, शाम शानदार में। तब तक ले हबीबी, क्या बात है, क्या लग रहे हो। 89.6 मिर्ची 1 थॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था, सारे बादल नीचे आ चुके, and उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है, देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: The Mentalist Suhani Shah.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ना तो हीरो के बारे में है ना ही हीरोइन। दिस इज द शो जहां मेन कैरेक्टर इज गुड म्यूजिक एंड गुड म्यूजिक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहाँ पे हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है। हम अपना 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक करेंगे, सम स्पेशल गाना शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। संजू राठौड़ की कॉम्पोजिशन, जी पार्क का प्रोडक्शन, संजू राठौड़ की आवाज में। गाने का नाम है बैंगल्स। 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार रहा ये गाना बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद राघव कौशिक की आवाज रेखा भारद्वाज के साथ, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है दरमिया, दिस इज द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन। मुसाफिर कैफे ओटीटी शो से है ये। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगल्स ऑन नंबर 10 देन दरमिया ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, राघव कौशिक का म्यूजिक, अमृता सलूजा के लिरिक्स, गाने का नाम है दरमिया, मुसाफिर कैफे से है ये गाना, द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. The show is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram pe jao. Mera handle is @RJKanika. Matlab mera naam to mummy ne Kanika hi rakha. Pichle 7 saal se I'm bringing these top 10 songs of the week for you. And tab se RJ Kanika. It's quite odd, pata hai. Bahut log mujhe jo sirf Instagram se jante hain, jab milte hain, to hi RJ Kanika bolte hain. And you don't even realize ki wo tumhari pehchan ban jati hai. It's not a bad thing, you know. Everybody wants that takeaway factor with their art, right? Gaana number 9 par humne Darmiyan suna Rekha Bharadwaj ji ki awaaz mein. Jis bhi gaane mein Rekha ji ki awaaz hoti hai, wo ek second ka gaana sunte hi hum samajh jaate hain ki are ye to Rekha Bharadwaj ji hain. Such strong is her voice, her identity. सोचने वाली बात है, इतने गाने आते हैं, इतने गाने जाते हैं, गाने सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन जाते हैं, लोग कुछ हफ्ते सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, पर कुछ गाने और कुछ आर्टिस्ट की आवाजें हमें हमेशा याद रहती हैं। इसे ही हम वो टेक अवे फैक्टर कहते हैं। वो आर्टिस्ट की आवाज हो सकती है, जैसे रेखा भारद्वाज जी की आवाज है, AR रहमान जी की आवाज है, सुनते ही पता चल जाता है कौन है, या फिर वो एक कंपोजर की ब्रिलियंस हो सकती है जो वो गाने में एक इंस्ट्रूमेंटल पीस या सोलो के साथ या किसी गिटार सोलो से इंट्रोड्यूस करें। इतने सारे आइकॉनिक गाने हैं जिनकी गिटार सोलोज या इंट्रो म्यूजिक को सुनते ही हमें पता है कि कौन सा गाना है, जैसे कि दिस वन। मैंने गाने का नाम नहीं बताया, गाने की पहली लाइन नहीं आई, आपने सिंगर्स को नहीं सुना, एंड यू नो इट्स साथिया का म्यूजिक। एट RJ Kanika इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको एक 90s के इंडी पॉप क्लासिक का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। RJ Kanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है। काउंटडाउन पर आगे चल के हमारे कसर क्लासिक में ये पूरा गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना इज अ नई नवेली एंट्री। इस गाने को छोटे बच्चे गा रहे हैं, कॉलेज वाले लोग रील्स बना रहे हैं, और कुछ नहीं तो मैं और आप इसको ऐसा एटीट्यूड स्टार्टर लाइन की तरह बोल रहे हैं। गाने का नाम है बूम शाकालाका बाय धंधा न्योलेवाला एंड कृष्णा। फिनोमिन हिसाब का प्रोडक्शन। बूम शाकालाका इज अ नई नवेली एंट्री डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: Blana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah live.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनी की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साडी सुन। दिस सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है ये गाना, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Ghana Indie Top 10. Badi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I truly believe gaane share karne se pyar badhta hai. Is show ke zariye jo gaane aap mere saath recommend karte ho aur gaano ke saath saath jo aap apne experience, kahaniyan, puri gossip bata dete ho na ki yaar tab hua tha aur ye gaane ne ye kiya tha. सबसे पहले तो कस के थैंक यू। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अश्काई, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू ऑल योर रिकमेंडेशंस। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। ये वो गाने हैं जो ना तो पुराने साउंड करते हैं और ना ही नए हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we're going to feature this week is
2: डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी।
0: गाने का नाम है डूबा डूबा बाय द सिल्क रूट, मोहित चौहान की आवाज में। ये गाना 1998 में रिलीज हुआ था, सिल्क रूट की डेब्यू एल्बम बूंदे का पार्ट था। आई थिंक आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ दिस सॉन्ग। 1998 का वो दौर था जब पॉप म्यूजिक का मतलब बिल्कुल भी फिल्म जैसा म्यूजिक बनाना नहीं था, बल्कि ये गाना अपने आप में ही एक दुनिया थी, अपने आप में ही एक फिल्म थी। एंड समटाइम्स आई थिंक कि क्या तब सिल्क रूट को इस बात का कोई भी अंदाजा था कि वो हमें एक ऐसा गाना दे जाएंगे जो पूरे 30 साल बाद भी हम उतनी ही इंटेंसिटी के साथ सुनते हैं। आज भी इस गाने को सुन के एकदम मन करता है कि मैं पहाड़ों पे चली जाऊं, कि शाम का वक्त है, सूरज अभी ढला ही है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है बट रोशनी भी है, पास में एक नदी बह रही है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। चाहे जगह असली हो या ना हो, बट दिस फीलिंग एंड दिस सॉन्ग ऑलवेज इमोट्स दिस। कुछ गाने भी तो हमारी जिंदगी में मेमोरी का टिकट होते हैं, दे टेक अस बैक टू दैट ओल्ड प्लेस, कोई भूला हुआ दिन, कोई दबी हुई मेमोरी। एंड दिस सॉन्ग बाय मोहित चौहान एंड सिल्क रूट इज एग्जैक्टली दैट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड चलो उस नदी के किनारे या ढलती हुई शाम में मोहित चौहान की आवाज में सिल्क रूट का गाना डूबा डूबा आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं।

Man, oh man, this song just gets better with every year. Mohit Chauhan ki awaaz mein, that was Duba Duba on our cassette classic this week. इस सेगमेंट के बाद मुझे सब अच्छा अच्छा लगने लगता है जैसे आई हैव गॉन बैक टू द सिंपल टाइम जब हमारे पास सिर्फ वक्त ही वक्त था वक्त बर्बाद करने का और वक्त बर्बाद करने का कोई गिल्ट नहीं था एट आरजे करिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आगे मुझे बताओ 90s 2000s के वो कौन से आइकॉनिक इंडी पॉप गाने हैं जिनको जब आप आज सुनते हो सो यू आर टेकन बैक टू दो सिंपलर टाइम्स आई एम नॉट दैट ओल्ड बट आई एम एन ओल्ड सोल लेकिन मैं बात तो ऐसे करती हूँ ओहो पुराने दिन सिंपल टाइम्स बट इट इज ट्रू But then there are some songs, आज के artist, contemporary music, जो ऐसे गाने बना रहे हैं जो हमारी complicated life को simple कर देते हैं And Farak is exactly one of those artists. Countdown का अगले वाला गाना written and composed by Farak, गाने का नाम है तारे 7 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार पिछले हफ्ते से 2 पोजिशन ऊपर जम करके तारे is playing right next for you on गाना नंबर 6. You are listening to Gaana Indie Top 10, बंदी का नाम है कनिका Enjoy. Number 6.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है उड़ी उड़ी दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको सुन के आपका दिल अनलॉक हो जाता है। दे साउंड लाइक फ्रीडम। मन करता है कि गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलू, दोनों हाथ फैलाऊं और चिल्लाऊं, मजे करूं, नाचूं। They put you in a groove, they put you in a good mood. And there are some incredible independent songs. जैसे चाल में मस्ती ला देते हैं, जो हमारे दिल को अनलॉक कर देते हैं, which sound like freedom. And I'm going to talk about one such song. It's one of the most celebrated collabs of last 10 years. I'm talking about Divine and Raja Kumari ka City Slums. Run and tell your mommy. ये गाना 2017 में आया था एंड व्हाट अ वंडरफुल कोलिजन ऑफ टू वर्ड्स। एक तरफ राजा कुमारी, एले बेस्ड पॉप सिंगर सॉन्ग राइटर, मीट्स मुंबई के अपने गली रैपर डिवाइन। आज इट साउंड्स लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, राइट? बिकॉज हम इस तरह के कोलैबोरेशंस देखते रहते हैं, इंटरनेशनल एंड इंडियन आर्टिस्ट के बीच में देखते हैं, बट दिस कोलैब इन 2017 मेंट सच अ बिग डील। राजा कुमारी कैलिफोर्निया बेस्ड, वो ऑलरेडी बहुत बड़े अमेरिकन आर्टिस्ट के लिए गाने लिख चुकी थी, उनके साथ कोलैबोरेट कर चुकी थी, एंड उनका तेज सरार English flow with Divine sounds incredible, like a beautiful cocktail in the song. Why I love listening to this song is that ye gana na humko humari identity se bahut close feel karwata hai. It makes you feel good about yourself. It makes you feel good about where you belong to. To apne radio ke volume bada lijiye. Raja Kumari and Divine ka gana, gana ka naam hai City Slums. It's got an earworm hook and I'm sure you will love it. Playing right next for you on Gana Indie Top 10, bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हेलो,
5: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट? और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
4: बोल कौन रहे हैं?
5: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
4: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
5: बिल्कुल
4: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
5: सही बात है,
4: गर्ल्स को नहीं देंगे।
5: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
4: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं।
5: एक सेकंड मैम रुकिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं
4: हाँ किससे बात कर रहे हैं?
5: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
4: हेलो,
5: हाँ बोलिए।
4: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
5: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
4: नहीं, आप मेरे से तो नहीं बातें सही से कर रहे हैं।
5: हाँ?
4: नकली तरह से आप मेरे से
5: नहीं,
4: बातें कर
5: नहीं
4: रहे हैं।
5: नकली तरीके से क्या?
4: नहीं असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
5: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
4: वो तो कोई बकौती है क्या?
5: नहीं, तमीज सीखिए। नहीं तमीज,
4: नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए।
5: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया।
4: Okay.
5: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 3।

0: इनक्रेडिबल म्यूजिक डुओ फ्रॉम कुरुक्षेत्र बंजारे का गाना, गाने का नाम है बरसात। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बरसात वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी। अब आते से ज्यादा टाइम तो आप गाना सुन लेते हो, गाने का नाम भूल जाते हो और फिर मुझे मैसेज करते हो कि गाना नंबर 4 पे कौन सा गाना बोला था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, आपके लिए जो गाने का नाम भूल जाते हो, लेट्स डू अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर दिस वीक वॉज संजू राठौड़ का बैंगल्स। राघव कौशिक रेखा भारद्वाज का दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
2: तेरे मेरे दरमिया।
0: उसके बाद गाना नंबर 8 पर नई नवेली एंट्री, कृष्णा दंदानियोली वाला का बूम शाकला का डेब्यूज ऑन गाना नंबर 8।
3: बूम शाकला का।
0: हर्ष नसीदीप क्लेयर का साडी सुन ऑन गाना नंबर 7। फरक का तारे स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। दिस ब्यूटीफुल फोक पॉप सॉन्ग्स बाय अनीश सरकार हृदय उड़ी उड़ी दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। बंजारे का बैरन था दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। डबल वैमी बाय बंजारे, उन्हीं का गाना बरसात हमने सुना ऑन गाना नंबर 3।
4: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा चाहेगी।
0: एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बादशाह शर्वी यादव हितेन का गाना, गाने का नाम है बैंगर। 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। ये गाना पिछले हफ्ते से एक नहीं दो नहीं पूरा 3 पोजीशन ऊपर जंप करके बादशाह का बैंगर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद न्यू मेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार है ये गाना, टिका हुआ है 3 हफ्तों से ऑन गाना नंबर 1, 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रौर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा, Yet again on Gaana number 1. Ye dono gaane back to back, banger on number 2, Shisha on number 1, only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika, enjoy.

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ऐ

0: ना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
2: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: The mentalist Suhani Shah.

0: छोटे से तिनके की अहमियत तब पता चलती है जब वो हमारी आंख में गिर जाता है, राइट?
1: मिर्ची कैफे।
0: हेलो, हाय, वेलकम। शो शुरू हो गया है मिर्ची कैफे। मैं हूँ आपके साथ पारुल। की हाल है भैया आप सबका? अलीशा चनाई का ये गाना कितने दिन बाद सुना, सच सच बताना मुझे। वेल, मैं पारुल यहाँ पे आ चुकी हूँ और अब ऐसे ही गानों में आपको लेके चलती रहूंगी। लेकिन सोचने की बात है ना, छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। बड़ी चीजों को हम कभी मुद्दा नहीं बनाते, बट द लिटिल थिंग्स लाइक तिनका। और आपको पता है, मैंने एक बहुत अमेजिंग चीज नोटिस की है। जो भी लोग ऐसे तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर, पाई पाई जोड़ जोड़ कर अपनी लाइफ बनाते हैं ना, वो बहुत आगे जाते हैं। डू यू नो अबाउट दिस गाय? 14 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। बहुत सारे हार्डशिप्स रहे, स्ट्रगल्स रहे। मेरठ में ही वॉज बॉर्न। काफी ऐसे डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में भी रहे और फिर तिनका तिनका कर करके बने कैलाश खेर। अगला एक बहुत खूबसूरत गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको सुनो। इट हैज सच अ पॉजिटिव वाइब। आई जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑल टुडे बाय दिस सॉन्ग। सुनो इसको, मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Escava la puscava la sacabana. Rambala. Murga, murga. La virva la murga.
2: Mirci, murga.
3: Hello.
4: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहा हूँ
4: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23
4: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का।
4: नहीं नहीं वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी किससे, झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर, जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या कर रहा
4: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
8: The show was absolutely amazing.
9: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहाँ पर।
8: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
9: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार।

0: कोई कैसे डिसाइड करे कि दोनों में से कौन सी लाइन ज्यादा सुंदर है? जस्ट लिसन टू दिस। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कहीं फिर लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, या फिर ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। आनंद बख्शी, टेक अ बाउ।
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ। अभी आपने सुना द ब्यूटीफुल सॉन्ग दो दिल मिल रहे हैं। आपको पता है इनके लिरिसिस्ट जो हैं उनका नाम आनंद बख्शी है। 4000 से ज्यादा ऐसी मैजिकल लाइंस लिखी हैं इन्होंने, मैजिकल गाने लिखे हैं। अगर आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताती हूँ, आपने बड़े सारे गाने सुने होंगे जैसे कि चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, ओके, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, या फिर ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, या फिर तुझे देखा तो ये जाना सनम, या फिर ये गाना। मुझे ना बहुत कमाल के लगते हैं वो लोग जो अच्छे शब्दों में ऐसे दिल तक पहुंच जाते हैं। अमेजिंग ना। अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो भी ऐसा ही कुछ अमेजिंग सा है। इट इज अ वेरी डिफरेंट वाइब जो मैंने अभी आपको पिछला गाना सुनाया उससे, एंड द येलो डायरी, आई लव इनके गाने ऑल्सो। सो द नेक्स्ट सॉन्ग अप फॉर यू इज कॉल्ड मर्ज। सुनो इस गाने को, वेरी डिफरेंट वाइब। ये गाना भी आपको एक अलग जगह ट्रांसपोर्ट कर देगा। जस्ट लिसन टू दिस। अभी आती हूँ वापस, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में जी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: जावेद अली, श्रेया घोषाल, इशक ज़ादे टाइटल ट्रैक फ्रॉम इशक ज़ादे सुना आपने अभी अभी। मिर्ची कैफे सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ।
1: मिर्ची कैफे।
0: आपको दो बंदों की कहानी सुनाती हूँ, एक छोटी सी, ठीक है। एक बार रिया ना अपने ऑफिस में पैंट्री की एक कोने वाली चेयर पे बैठ के लैपटॉप में घूर घूर के काम कर जा रही थी। उसका कोलीग था, दोस्त था रितेश, वो वहां से आ रहा जा रहा था, देख रहा था कि कुछ तो ये बिजी है या क्या कर रही है। बट व्हेन ही नोटिस्ड कि ये स्क्रीन की तरफ जिस तरीके से घूर रही है, ये काम तो नहीं कर रही है, उसने उसके पास जाके ऐसे स्मॉल टॉक शुरू किया कि हे रिया, व्हाट्स अप, कल देख रहा था मैं बड़ी मस्त स्टोरीज लगा रही थी, हाँ तू कहाँ घूमने गई थी। अचानक से रितेश ने देखा कि रिया के आईज में आंसू थे। उसने पूछा कि तुझे क्या हुआ है। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठ के उसको बोलने लगी कि नहीं प्लीज अभी जा, मुझे बात नहीं करनी। यू नो व्हाट, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जब हम लोगों को जज करते हैं कि यार ये लोग सोशल मीडिया पे आके क्या मस्त स्टोरीज लगाते हैं, और हम कभी कभी उनसे जेलस भी फील करते हैं कि यार इसकी लाइफ मस्त है। अगर आप किसी से सच में जाके आंखों में आंखें डाल के बात करोगे ना कुछ प्रॉब्लम सबके अंदर चल रही है यार। मे बी एक ये भी हो सकती है बात कि उन्होंने सोशल मीडिया को एक जरिया बना लिया है कि अपनी अंदर की स्ट्रगल्स से बाहर आके एक फन सी पोस्ट बना के डाल के शायद थोड़ी हैप्पीनेस मिल जाती है थोड़ी देर के लिए। पर दैट डजंट मीन कि सबकी लाइफ परफेक्ट चल रही है। आप ना अपने आप से पूछ के देखो, क्या सब कुछ ठीक है लाइफ में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने भी कहा है, वी आर ऑल ब्रोकन एंड दैट्स हाउ द लाइट गेट्स इन। कोई परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं सबकी जिंदगी में चल रही हैं, चलती रहेंगी। दैट्स व्हाई वी आर अलाइव, राइट? तो ठीक है यार, बस अपने आप के साथ थोड़ा सा पेशेंट रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूअल ना हम खुद ही के साथ हो जाते हैं। तो मेरे साथियों, जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन, हैंग इन देयर, हो जाता है सब ठीक। सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोलडाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: The show was absolutely amazing.
3: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: कितना खूबसूरत गाना ये. कोई होगा इस दुनिया में जिसको ये गाना पसंद नहीं होगा? यार हम सब जानते हैं कि रोमांटिकली लिखा गया है ये गाना एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके सोचो तो उनके पूरे मायने बदल जाते हैं.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. अभी आपने समझावा सुना, आपने उसकी एक लाइन सुनी. अब जस्ट लिसन टू मी, हाँ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के मेरी एक बात सुनो. आर यू अ पेरेंट या फिर मामी मासी मौसा चाचा फूफा ताऊ, कुछ तो होगे ना. कभी आप स्कूल ड्रॉप करने गए हो अपने बच्चे को? वो पहली बार याद है जब छोटा सा बच्चा आपका, आप उसको स्कूल छोड़ने गए थे? या फिर यू नो एज अ चाचू एज अ बुआ मासी जो भी, आप ये लाइंस ना एक बार दोबारा उस पर्सपेक्टिव से सुन के देखो. तेनू छड़के कित्थे जावा, तू मेरा परछावा, तेरे मुखड़े विच ही मैता, रब नू अपने पावा, मेरी दुआ सजदा तेरा करती सदा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी. मैं तेनू समझावा की वो जब छोटे से बच्चे को आप स्कूल छोड़ने जा रहे होते हो ना, जब वो बाय करके चला जाता है, ऐसा लगता है बस ये दोबारा जल्दी से आ जाए, क्यों भेजना पड़ रहा है हमें इसे स्कूल. Do you agree with me? ऐसा फील किया है कभी आपने? अगर हाँ तो प्लीज मुझे लिखना. ओके आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टाग्राम पे, paruls.word नाम से मिलूंगी आपको. ऑल्सो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो विच इज 7045983983. प्लीज मुझे बताना कि आपने ये वाली फीलिंग कभी भी महसूस की है और कभी आपने सोचा था कि इस गाने को इस तरीके से सोच सकते हैं. वेल अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगेन अरिजीत सिंह की आवाज में. इट इज अ सिंगल कॉल्ड दिल हारिया. ये मैंने रिसेंटली गाना सुना, पता नहीं क्यों मैंने पहले नहीं सुना था, बट यू हैव टू हियर दिस. ओके इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, सुनो इसको. मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद. सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
1: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Energy, burka.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yes.
3: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: मिलता है,
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी?
2: Talking about?
3: और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
2: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ओके?
3: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते हैं पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।

0: कुछ कॉम्पोजिशंस ना आपको ऐसे अंदर तक हिला के रख देती हैं। ये है वन ऑफ देम, शंकर महादेवन की आवाज में भी आपने सुना सपनों से भरे नैना।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। एंड यू नो, जब सच में किसी चीज के लिए पैशन होता है ना, वी गिव आर ऑल टू दैट थिंग। सारा जमाना कह रहा होता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम अपना पूरा झोंक देते हो अपने आप को उसके अंदर और फिर करके रहते हो। एंड आई नो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत लेट भी मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल वहां तक पहुंच के हमारा मन करता है कि बस यार बहुत हो गया, अब गिविंग अप वाले मूड में आ जाते हैं हम। पर बस वही नहीं करना है, थोड़ा सा चलते रहो एंड यू विल गेट इट। अगला जो मैं आपके लिए गाना लेकर आई हूँ ना, वो भी यही फीलिंग दर्शाता है। सो बेसिकली चक दे इंडिया के जो गाने लिखे गए थे, उनका मोस्टली डिवोशनल या पेट्रियोटिक से ज्यादा ऐसा फीलिंग होता था कि आई हैव गिवन इट ऑल, मैंने सब न्योछावर कर दिया इसके ऊपर। और ये भी वो फीलिंग दर्शाता है गाना। और जिन्होंने ये गाना गाया है ना, कृष्णा, यू नो कृष्णा ने बहुत कम गाने गाए हैं। आई लव हिज वॉइस सो मच कि मुझे लगता है कि मुझे इनकी आवाज में और गाने सुनने हैं अभी। इन्होंने गाने गाए हैं लाइक रब्बा फ्रॉम मुसाफिर, तेरी याद साथ है, नमस्ते लंदन, सोनियो राज से, और ये गाना इन्होंने गाया अलॉन्ग विद सलीम मर्चेंट। But what a beautiful song. सुनो इसको, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। Stay tuned, it's hot.

0: Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
1: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
0: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
1: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
0: Exactly. To kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
1: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
0: Lulu Mega Deals.
1: More shopping, more savings.
0: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
2: The show was absolutely amazing.
3: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
4: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live

0: रिवाइज वर्जन्स जो है ना गानों के फिल्मों के अंदर, उनकी एक अलग ही लीग होती है. दिस वॉज फ्रॉम ए दिल है मुश्किल बुलिया रिप्राइज, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में. सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची कैफे.
0: एंड यू नो, हम लीग की बात कर रहे हैं, गानों की बात कर रहे हैं, एक्टर्स की भी बात करते हैं. आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, आपके अपने फेमस रहमान डकैत अक्षय खन्ना, आपको रहमान डकैत की तो उनकी पूरी इमेज याद है राइट? आपको दिल चाहता है वाला सिद्धार्थ सिड याद होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है, 1998 की फिल्म दैट वाज कॉल्ड डोली सजा के रखना फॉर अक्षय खन्ना. यू हैव टू वॉच दैट फिल्म, आप माइंड ब्लो हो जाएंगे इनकी एक्टिंग, इनका डांस ऑन द ट्रैक कॉल्ड खेवा रे खेवा. अगर आपने नहीं देखा है, यू मस्ट वॉच दैट फिल्म फॉर योर रहमान डकैत और अक्षय खन्ना. एंड दिस ट्रैक जो मैं अभी आपके लिए लेकर आ रही हूँ, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, ये ना मिलेनियल्स को तो डेफिनेटली याद होगा. इतना सुकून भरा रोमांटिक गाना होता था ना ये, मुझे बहुत पसंद था और ये मुझे ऐसे चलते फिरते कहीं सुनाई दे गया. एंड आई वाज लाइक ओ गॉड आई हैव टू प्ले इट फॉर यू ऑल. सुनो इस गाने को, अभी आती हूँ वापस. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी आपने छोटे बच्चों के साथ डील किया है? आप जितना भी उनको मना करोगे कि बेटा इधर से गिर जाओगे, उधर नहीं जाना है, तब भी वो वहीं जाएंगे और गिरेंगे। चाहे आप उनको कितना भी मना करो कि स्विच बोर्ड पे हाथ नहीं डालना है, वहां करंट आ सकता है, पर वो वही करेंगे। तो जो हमारा दिल है ना, इट्स जस्ट लाइक छोटा बच्चा। आप रोक लो 1000 बार पर दिल वही करेगा जो उसने करना है।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और दिमाग और दिल की ये जो रंजिश है ना आपस में, दिमाग कितना भी समझा ले, दिल हार नहीं मानता और बाज नहीं आता। रत्ती भर भी बाज नहीं आता, करके रहता है जो करना है, और फिर चोट खाता है, और फिर दिमाग से पूछता है अब क्या करूं भाई, फंस गया। सो दिस साइकिल विल गो ऑन फॉरएवर। अब जैसे कि ये गाना, यू नो, उदित नारायण इसमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जैसे ही मैं घर से निकला, रास्ते में देखा कि वो बाल बना रही थी और मेरा दिल आ गया उस पे। सो यू नो, ये तो चलता ही रहेगा भाई, कितना भी समझा लो तुम। सुनो इस गाने को यहीं पर, फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड पापा कहते हैं। लिसन टू दिस एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: The Mentalist Sohani Shah.

0: यार ये फिल्म ना चीनी कम से ये गाना लेकर आई हूँ आपके लिए, जाने दो ना, श्रेया घोषाल की आवाज में आपने सुना
1: मिर्ची कैफे।
0: मिर्ची कैफे इज द शो, मेरा नाम है पारुल। डू यू नो चीनी कम जिसके डायरेक्टर हैं आर बल्की, उन्होंने लिखी थी अमिताभ बच्चन के लिए, और ये पूरी जो फिल्म है इट इज जस्ट अबाउट द एज गैप बिटवीन द एक्टर एंड द एक्ट्रेस। सो अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं रोल बुद्धदेव गुप्ता का, जो कि लंदन के शेफ हैं, और एक्ट्रेस हैं तब्बू, ठीक है, जो 30 साल उनसे छोटी हैं। एंड फनीएस्ट पार्ट इन दिस फिल्म वॉज कि तब्बू के जो पापा हैं, जो प्ले कर रहे हैं परेश रावल, वो अमिताभ बच्चन यानी बुद्धदेव गुप्ता उस कैरेक्टर से छोटे हैं एज में, समझ रहे हैं आप ये डायमेंशन। और ये गाना, ये भी समझो कि अभी अभी मैंने चलाया आपके लिए जाने दो ना, मुझे तो जाने दो ना, इसका मतलब ये भी है कि अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। एंड मुझे बहुत बहुत मजा आता है आप सबके डीएम्स पढ़कर, मैसेजेस पढ़कर, आप जो गाने बोलते हो वो मैं लाने की कोशिश करती हूँ। आई होप निशांत एंड विनीत आपको अच्छे लगे होंगे, आपके गाने आज मैंने अपनी प्लेलिस्ट में प्ले किए हैं। एंड आई लव दैट यू राइट टू मी, मैं सबका जवाब देती हूँ। आप मुझे डीएम कर सकते हो paruls.world इंस्टाग्राम पे मैं मिलूंगी, और मेरा स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 7045983983। आप मुझे बता सकते हो आपको ये गाने कैसे लगते हैं, शो कैसा लगता है, आपको कौन सा गाना सुनना है, ये भी आप लिख के भेज सकते हो। एंड आई एम सॉरी, कुछ लोग हैं जिनके गाने मैंने प्ले नहीं किए हैं इस एपिसोड में, आई होप मैं अगली बार आप तक वो पहुंचा सकूं। बट यस, अभी मुझे जाने दो ना, और अगला गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ मिर्जापुर द मूवी से। ये एक्चुअली गाना बहुत पुराना है, नुसरत फतेह अली खान साहब के जमाने का गाना है, बट दिस इज अ ब्यूटिफुल रेंडिशन। इसको आप सुनो और अपना ढेर सारा ख्याल रखो, और सुनो जिससे प्यार करते हो उसे बताते रहो, कोई बात नहीं अगर 15 साल से साथ रह रहे हो, 20 साल से रह रहे हो, 1 साल से रह रहे हो, यू हैव टू फाइंड वेज टू टेल पीपल दैट यू लव देम, शर्माना नहीं है, और फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपके ताशी है आपके साथ। और स्कूल की जब याद आती है ना, तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी मज़ेदार मेमोरी याद आती है कि जब टीचर कोई क्लास में सवाल पूछ लेता था ज़रूरी, या फिर कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब ना पता हो, तो आप ऐसे ना पूरी कोशिश कर रहे होते थे कि आप टीचर को देखें ही ना और टीचर आपको ना देखे। जैसे बिल्लियां होती हैं कुछ गड़बड़ करके बेड के नीचे सर घुसा देती हैं कि उनको दुनिया नहीं देख पा रही है, वैसी आप कोशिश करते थे कि आप किसी तरीके से टीचर की नज़र से गायब हो जाएं। उसी पे एकदम सटीक बैठता हुआ नूह नारवी साहब का एक शेर मिला, तो हमने सोचा आपको नज़र करें। कहते हैं कि कहीं ना उनकी नज़र से नज़र किसी की लड़े, कहीं ना उनकी नजर से नजर किसी की लड़े, वो इस लिहाज से आंखें झुकाए बैठे हैं। आए हाय क्या बात है। और मतलब रोमांटिक पहलू तो है ही कि ऑफ कोर्स नजरें बचाती हैं, जो माशूका जो खूबसूरत लोग होते हैं वो नजरें बचा के चलते हैं। लेकिन मुझे लगा ये स्कूल की याद आई मुझे अचानक से, क्लास की याद आई कि जब सवाल ना पूछे टीचर तब यही आता है जहन में कि कहीं ना उनकी नजर से नजर किसी की लड़े, वो इस लिहाज से आंखें झुकाए बैठे हैं। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो,
4: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
3: स्पीकिंग.
4: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
3: हाँ, sure.
4: अच्छा मैडम, इसमें यह है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
3: जी.
4: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
3: बोल, कौन रहे हैं?
4: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
3: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
4: बिल्कुल
3: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
4: सही बात है,
3: गर्ल्स को नहीं देंगे.
4: सही बात कह रही है. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
3: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
4: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
3: किससे बात कर रहे हैं?
4: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
3: हेलो.
4: हाँ बोलिए.
3: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए.
4: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
3: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
4: हाँ?
3: नकली तरह से आप मेरे से
4: नहीं,
3: बातें कर
4: नहीं
3: रहे हैं.
4: नकली तरीके से क्या?
3: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
4: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
3: वो तो कोई बपौती
4: है. तमीज सीख लिया. नहीं,
3: तमीज नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए.
4: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाएं. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया.
3: Oh,
4: okay. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
6: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
5: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
6: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
5: Exactly. So kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
6: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
5: Lulu Mega Deals.
6: More shopping, more savings.
5: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका दाशी आपको मुखातिब कराए हमारे आज के शायर नूह नारवी साहब से। अब मैंने पहला शेर उनका पढ़ा तो मुझे लगा नूह नारवी साहब के बारे में आपको और ज्यादा बताना वाजिब है। बिल्कुल जी, दाग दहलवी साहब के वन ऑफ द वेरी लेजेंडरी शायर्स के शागिर्द रहे, बेबाक लहजे के लिए विख्यात रहे अपने, और बेसिकली रायबरेली उत्तर प्रदेश के थे नूह नारवी साहब। इनका एक बड़ा सटीक शेर मैं आपको बड़ा सही शेर बताता हूँ। कहते हैं कि इश्क में मुझको बिगड़कर अब सवरना आ गया, इश्क में मुझको बिगड़कर अब सवरना आ गया, हो गया नाकाम लेकिन काम करना आ गया। है कि नहीं, कुछ चीजों को बिगड़कर ही सही किया जा सकता है, उनसे उबरना बिगड़कर ही आता है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका दाशी आपके साथ इन यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पे आपका ताशी है आपके साथ। और दोस्त, जिंदगी में जब कोई बहुत ज्यादा ये बोलने लग जाए ना कि बिलीव मी यार, मेरा भरोसा करो, मेरा विश्वास करो, बस उसी जगह पे विश्वास करना, भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होने लग जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये बोल क्यों रहा है यार, ऐसा है ना। बड़ा सटीक शेर मिला इस बारे में मुझे, आयरीन फरहत साहिबा का, कहती हैं कि वहीं पे टूटने लगता है एतबार वफा। एतबार वफा मतलब वफा पर जो मेरा भरोसा है ना, वहीं पे टूटने लगता है एतबार वफा, जहां यकीन ज्यादा दिलाया जाता है। क्या बात है, क्या कितनी सटीक बात, कितनी दिल की बात कह दी है कि यार ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि बिलीव मी बिलीव मी बिलीव मी, ऐसा एक्ट करने की जरूरत है कि इंसान आप पे बिलीव कर पाए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
4: I like that song.

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और आ गया है मेरा पसंदीदा हिस्सा
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: हाँ जी, और आज के ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाएं बुल्ले शाह साहब का लिखा हुआ, जो कि एक बड़े ही रेवर्ड हमारे सूफी पोएट हुए पंजाब से 17th सेंचुरी में, उनका लिखा हुआ एक ऐसा गाना जो कि सदियों दर सदियों रिक्रिएट होता आया है और आज भी हम सबकी जबान पे है। दिस इज तेरे जया होर दिसदा।

अगर आपको ये नगमा पसंद आया हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर, और वहां आपको मिल जाएंगी मेरी आवाज में कई सारी गजलें, कई सारे ऐसे ही नगमे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहें अपने ताशी के साथ. इट्स हॉट.

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: Mirchi Helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है, क्या करूं?
1: ब्रो यार, इट्स सो सिंपल, कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे, एवरीवन विल नो योर वैल्यू।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में कई बार मैंने ये होते हुए देखा कि लोग अपने घर से तो कूड़ा निकाल देते हैं मगर घर के ठीक बाहर या फिर अपने मोहल्ले में कहीं फेंक आते हैं, है ना। कुछ दिन पहले एक बड़ा उम्दा शेर पढ़ा जो इसी मौजू पे था। तैमूर हसन साहब है, कहते हैं कि मुझको कहानियां न सुना शहर को बचा, मुझको कहानियां न सुना शहर को बचा, बातों से मेरा दिल न लुभा शहर को बचा, तू जाग जाएगा तो सभी जाग जाएंगे, ए शहर यार जाग जरा शहर को बचा, तू चाहता है तेरा घर महफूज हो अगर, तू चाहता है घर तेरा महफूज हो अगर, फिर सिर्फ अपना घर ना बचा शहर को बचा। वाह जी वाह, किस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है वही बात शायद बहुत लोग को समझ में नहीं आती है। बहरहाल आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Rambana.
2: Murga, murga. Navid wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
5: हाँ जी कौन?
4: हाँ जी कौन?
5: हेलो, किससे बात करनी है?
4: किससे बात करनी है
5: भैया? किससे बात?
4: अबे किससे बात करनी है
5: भैया? नंबर चेक करके,
4: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
5: पागल
4: पागल
5: पता नहीं कौन बोल रहा
4: है, अरे पता नहीं कौन बोल रहा था।
6: इको आ रहा है, इको।
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो, जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा
5: हूँ।
4: नंबर चेक के मिला?
5: हेलो
4: हेलो
5: भैया, क्यों परेशान कर रहा?
4: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास, पागल कहीं का।
6: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? बुरा मत मानिएगा प्लीज।
5: रवि है।
6: रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
5: भाई,
6: आप खत्म कर दो यार।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
7: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
0: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
7: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
0: Exactly. To kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
7: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
0: Lulu Mega Deals.
7: More shopping, more savings.
0: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
8: The show was absolutely amazing.
9: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
10: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ और अब महफिल में मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे। किस्सा कॉर्नर,
1: कि आपको सुनाए आपका ताशी आज का किस्सा जो आ रहा है मिर्जा गालिब के जानिब से, और किस्से का नाम तुमने मेरे पैर दबाए मैंने पैसे। एक रोज मिर्जा साहिब के जो शागिर्द थे मीर मेहंदी मजरूह, वो उनके मकान पर आए, देखा कि मिर्जा साहिब पलंग पर पड़े कराह रहे हैं, ये उनके पांव दबाने लग गए। मिर्जा साहिब ने कहा, भाई तू सैयद जदा है, मुझे क्यों गुनहगार करता है। मीर मेहंदी मजरूह ना माने और कहा कि आपको ऐसा ही ख्याल है तो पैर दबाने की उजरत मतलब मजदूरी दे दीजिएगा। मिर्जा साहब ने कहा, हाँ इसमें हर्ज नहीं। जब वो पैर दबा चुके थे तो उन्होंने अजराह मजाह मिर्जा साहिब से उजरत मांगी, मजदूरी मांगी पैर दबाने की। तो मिर्जा साहिब ने कहा, भैया कैसी उजरत, तुमने मेरे पांव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर हो गया। मजाहिया बात कॉमिक रिलीफ के लिए। देखा कि आपको ऐसा ही ख्याल है तो पैर दबाने की उजरत मतलब मजदूरी दे दीजिएगा। मिर्जा साहब ने कहा, हाँ इसमें हर्ज नहीं। जब वो पैर दबा चुके थे तो उन्होंने अजराह मजाह मिर्जा साहिब से उजरत मांगी, मजदूरी मांगी पैर दबाने की। तो मिर्जा साहिब ने कहा, भैया कैसी उजरत, तुमने मेरे पांव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे।

0: क्या
1: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और एक वक्त के बाद इश्क जब परेशान कर देता है तो इंसान कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाता है और इश्क के नखरे उठाना नहीं चाहता फिर, और कहीं ना कहीं उस सामने वाले शख्स के ऊपर से भरोसा भी उखड़ जाता है। बिस्मिल सईदी साहब का वो शेर याद आता है कि दोहराई जा सकेगी ना अब दास्ताने इश्क, दोहराई जा सकेगी ना अब दास्ताने इश्क, कुछ वो कहीं से भूल गए हैं कहीं से हम आए हाय। और इसीलिए कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किसी चीज में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें दिक्कत का अंदेशा हो। शोख जी का शेर है कि जब दूर जा सकेगा ना रोएगा फिर बहुत, जब दूर जा सकेगा ना रोएगा फिर बहुत, ऐ शोख इसलिए तू हमारे से दूर रह, है ना पते की बात। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: மிர்ச்சி இட்ஸ் ஹாட். பாலிவுட் போல்டால், பாலிவுட் பாலிவுட் பாலிவுட் போல்டால், only on மிர்ச்சி இட்ஸ் ஹாட்.
1: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
2: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है आपका ताशी पलटे और पढ़े अपनी डायरी के कुछ सफे।
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से।
1: मेरी दोस्त, एक जमाने की बात है, मेरा बड़ा बुरा दिल टूटा था और मैंने सोचा क्यों ना अपने गम को प्रोडक्टिव बनाया जाए और अपने दर्द को भुलाने के लिए उसे बैक बर्नर में डालने के लिए सबसे सही रास्ता मैंने समझा काम। अजी, ये वो जमाना था जब अपने ख्यालों की चीखें काम के हेडफोन लगा के दबा देते थे हम। कुछ सालों बाद मैंने पढ़ा कि जावेद अख्तर के वालिद जानिसार अख्तर साहब भी ऐसी ही कश्मकश से गुजरे थे और जब गुजरे थे तो उन्होंने लिखा था, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें। इल्म का मतलब नॉलेज होता है और रिसाले मतलब मैगजीन्स। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। जान के थोड़ा अच्छा लगा कि अकेला नहीं हूं जिसने डिप्रेशन को एग्जॉशन से बहाल करने की कोशिश करी। लेकिन उसके दिए खत आज भी हैं मेरे पास। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और चांद और आशिकी को ना हमेशा एक दूसरे से जोड़ के देखा गया है, रोमांटिसिज्म के एक चश्मे से देखा गया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि रोमांटिसिज्म खत्म हो जाता है अगर पेट में रोटी ना हो। शकील आजमी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है इस बात पे, लिखते हैं, भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है। आय हाय, रियलिटी, रोमांटिसिज्म और ऐसी कई सारी दुनियाओं को एक्सप्लोर करें हमारी मिर्ची महफिल में, सिर्फ अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: हेलो
1: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
0: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
1: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
0: 23
1: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
0: बिल आया था 2200 रूपए का?
1: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
0: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
1: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
0: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
1: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
0: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
1: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
0: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
1: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
0: चिल्लाने का क्या मतलब है?
1: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ, आपको मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं, आप बेकार की बातें कर रहे हैं।
2: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
0: हेलो
1: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
0: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
1: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
0: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
1: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
0: कुकड़ों को
1: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और ऐसा जिंदगी में शायद आपके साथ भी हुआ हो।
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि जब आप जिससे प्यार करते थे वो शहर में कहीं टकरा जाए आपसे, और माहौल कुछ ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करें। हाँ जी, ऐसा ही जब हाल में मेरे साथ हुआ, तो घर वापस लौटते वक्त गाड़ी में बैठे हुए जहन में जावेद अख्तर साहब की गजल के शेर तैर रहे थे कि याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रस्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। डर हमको भी लगता है रस्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफर पर ऐ दिल अब जाना तो होगा। और शेर मुकम्मल है दोस्त की, कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, जो ये फर्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। ये जो आखिरी शेर है ना, मेरा बड़ा पसंदीदा है, और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में इसका सच बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। फिलहाल सुनते रहे मिर्ची महफिल, आपके ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।
3: होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। और परसों की बात है, मैं अपनी थेरेपिस्ट के यहाँ बैठा था, उनसे बात चल रही थी, तो वो कहती हैं, ताशी तुम्हें अपनी खुशियों के रास्ते से हटना पड़ेगा, तुम खुद को खुश नहीं रहने देते हो, किसी ना किसी बात को याद करके कभी किसी और को कोसते हो, कभी खुद को कोसते हो। मैं हंसने लगा तो पूछती हैं क्या हुआ। मैंने कहा आपकी बातें सुनकर इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर याद आ गया, अब उनको सुना दिया तो आप भी गौर फरमाएं। इफ्तिखार साहब लिखते हैं, जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूं। अब इफ्तिखार साहब की खुद से सुलह हुई कि नहीं ये तो नहीं पता, मगर मेरी जरूर हो जानी चाहिए। अजी थेरेपिस्ट को इतना पैसा किस लिए दे रहा हूं मैं। सुनते रहे मिर्ची महफिल, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और वक्त हो चला है मिर्ची महफिल से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: हाँ जी, और आज के ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाएं बुल्ले शाह साहब का लिखा हुआ, जो कि एक बड़े ही रेवर्ड हमारे सूफी पोएट हुए पंजाब से 17th सेंचुरी में, उनका लिखा हुआ एक ऐसा गाना जो कि सदियों दर सदियों रिक्रिएट होता आया है और आज भी हम सब की जबान पे है। दिस इज तेरे जया होर दिसदा।

अजीबा बुल्ले शाह साहब के जो लफ्ज हैं वो अजय हैं, मतलब उनसे कोई जीत नहीं सकता और वो चले आ रहे हैं कितनी से 17 सेंचुरी में लिखा गया था और आज तक गाया जा रहा है जब 21वीं शताब्दी तक, कुछ तो बात है कि नहीं। बहरहाल आप मिल सकते हैं मुझसे मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए